ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

नेत्रभिदे नमः ओम उग्राय नमः ओम पशुपतये नमः ओम तार्क्ष्याय नमः ओम प्रियभक्ताय नमः ओम परंतपाय नमः ओम दात्रे नमः ओम दयाकराय नमः ओम दक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम कामशासनाय नमः ओम श्मशाननिलयाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः ओम श्मशान

अमृतपाय नमः, ॐ सौम्याय नमः, ॐ महातेजसे नमः, ॐ महाद्युतये नमः, ॐ तेजोमयाय नमः, ॐ अमृतमयाय नमः, ॐ अन्नमयाय नमः,

नमः ॐ महर्षि कपिलाचार्याय नमः ॐ विश्वदीप्तये नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ पिनाकपाणये नमः ॐ भूदेवाय नमः ॐ स्वस्तिदाय नमः ॐ स्वस्तिकृते नमः ॐ सुधिये नमः ॐ धातृधाम्ने नमः ॐ धामकराय नमः ॐ सवर्गाय नमः ॐ सर्वगोचराय नमः ॐ ब्रह्मसृजे नमः ॐ विश्वसृजे नमः ॐ सर्गाय नमः ॐ कर्णिकारप्रियाय नमः ॐ कवये नमः ॐ शाखाय नमः ॐ विशाखाय नमः ॐ गोशाखा

नमः। ॐ अमृताय शाश्वताय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ बाणहस्ताय प्रतापवते नमः। ॐ कमण्डलुधराय नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ अवाङ्मनसगोचराय नमः। ॐ अतीन्द्रियाय महामायाय नमः। ॐ सर्वावासाय नमः। ॐ चतुष्पथाय नमः।

वीर्याय नमः ॐ भूतचारिणे नमः ॐ पुरन्दराय नमः ॐ निशाचराय नमः ॐ प्रेतचारिणे नमः ॐ महाशक्तये महाद्युतये नमः ॐ अनिर्देश्य वपुषे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सर्वाचार्याय मनोगतये नमः ॐ बहुश्रुताय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ नियतात्मने ध्रुवाय नमः

ॐ सर्वशासकाय नमः। ॐ नित्यप्रियाय नित्यनृत्याय नमः। ॐ प्रकाशात्मने प्रकाशकाय नमः। ॐ

ॐ तीर्थदृश्याय नमः ॐ तीर्थदाय नमः ॐ अपां निधये नमः ॐ अधिष्ठानाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ जयकालविदे नमः ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ॐ प्रमा

कर्तृकारणाय नमः ॐ कर्त्रे नमः ॐ सर्वबन्धविमोचनाय नमः ॐ व्यवसायाय नमः ॐ व्यवस्थानाय नमः ॐ स्थानदाय नमः ॐ जगदादिजाय नमः ॐ गुरुदाय नमः ॐ ललिताय नमः ॐ भेदाय नमः ॐ भावात्मने आत्मनि संस्थिताय नमः ॐ वीरेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ वीरासनविधये नमः।

ॐ परमायाय नमः, ॐ शंभराय नमः, ॐ व्याघ्रलोचनाय नमः, ॐ रुचये नमः, ॐ बहुरुचये नमः, ॐ वैद्याय नमः, ॐ वाचस्पतये नमः।

नमः, ॐ कांताय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ रविलोचनाय नमः, ॐ विश्वोत्तमाय नमः, ॐ वीतभयाय नमः, ॐ विश्व

भूषणाय नमः ॐ ऋषये नमः ॐ ब्राह्मणाय नमः ॐ ऐश्वर्याय नमः ॐ जन्ममृत्युजरादिकाय नमः ॐ पञ्चयज्ञसमुत्पत्तये नमः ॐ विश्वेशाय नमः ॐ विमलोदयाय नमः ॐ अनाद्यन्ताय नमः ॐ आत्मयोनये नमः ॐ वत्सलाय नमः ॐ भूतलोकदृशे नमः ॐ गायत्रीवल्लभाय नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ विश्वावासाय नमः ॐ प्रभाकराय नमः ॐ शिशवे नमः ॐ गिरिरथाय नमः ॐ सम्राजे नमः ॐ सुषेणाय सुरशत्रुघ्ने नमः ॐ अनेमये नमः ॐ इष्टनेमये नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ विगतज्वराय नमः ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः ॐ महाज्योतिषे नमः ॐ तनुज्योतिषे नमः ॐ अचञ्चलाय नमः ॐ पिङ्गलाय नमः ॐ कपिलश्मश्रवे नमः ॐ भालनेत्राय नमः ॐ त्रयीतणवे नमः ॐ ज्ञानस्कन्दाय नमः ॐ महानीतये नमः ॐ विश्वोत्पत्तये नमः ॐमुपप्लवाय नमः ॐ भगाय नमः ॐ विवस्वते नमः ॐमादित्याय नमः ॐ गतपाराय नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ कल्याणगुणनाम्ने नमः ॐ पापघ्ने नमः ॐ पुण्यदर्शनाय नमः ॐ उदारकीर्तये नमः ॐ उद्योगिने नमः ॐ सद्योगिने नमः ॐ सदसत्रपाय नमः ॐ नक्षत्रमालिने नमः ॐ नाकेशाय नमः ॐ स्वाधिष्ठानषडाश्रयाय नमः ॐ पवित्राय पापनाशाय नमः ॐ मणिपूराय नमः ॐ नभोगतये नमः ॐ हृत्पुण्डरीकमासीनाय नमः ॐ शक्राय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ उष्णाय नमः ॐ गृहपतये नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ समर्थाय नमः ॐ अनर्थनाशनाय नमः ॐ अधर्मशत्रवे नमः ॐ अज्ञेयाय नमः ॐ पुरुहूताय पुरुश्रुताय नमः ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ॐ बृहद्गर्भाय नमः ॐ धर्मधेनवे नमः ॐ धनागमाय नमः ॐ जगदित्तैषिणे नमः ॐ सुगताय नमः ॐ कुमाराय नमः ॐ कुशलागमाय नमः ॐ हिरण्यवर्णाय ज्योतिष्मते नमः ॐ नानाभूतरताय नमः ॐ ध्वनये नमः ॐ आरोग्याय नमः ॐ नमनाध्यक्षाय नमः ॐ विश्वामित्राय नमः ॐ धनेश्वराय नमः ॐ ब्रह्मज्योतिषे नमः ॐ वसवे नमः ॐ धाम्ने नमः ॐ अनुत्तममहाज्योतिषे नमः ॐ मातामहाय नमः ॐ मातरिष्वणे नमः ॐ नभस्वते नमः ॐ नागहारदृशे नमः ॐ पुलस्त्याय नमः ॐ पुलहाय नमः ॐ अगस्त्याय नमः ॐ धातुकर्ण्याय नमः ॐ पराशराय नमः ॐ निरावरणनिर्वाराय नमः ॐ वैरञ्ज्याय नमः ॐ विष्टरश्रवसे नमः ॐ आत्मभुवे नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अत्रये नमः ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ॐ महायशसे नमः ॐ लोकवीराग्रण्ये नमः ॐ वीराय नमः ॐ चण्डाय नमः ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॐ व्यालकल्पाय नमः ॐ महाकल्पाय नमः ॐ कल्पवृक्षाय नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ अलङ्करिष्णवे नमः ॐ अचलाय नमः ॐ रोचिष्णवे नमः ॐ विक्रमोन्नताय नमः ॐ आयुषे नमः ॐ शब्दपतये नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ प्लवनाय नमः ॐ शिखिसारथये नमः ॐ असंसृष्टाय नमः ॐ अतिथये नमः।
ஓம் சத்ரவே நம, ஓம் பிரமாதினே நம, ஓம் பாதபாசனாய நம, ஓம் வசுஸ்ரவசே நம, ஓம் கவ்யவாஹாய நம, ஓம் பிரதப்தாய நம, ஓம் விஸ்வபோஜனாய நம, ஓம் ஜப்யாய நம, ஓம் ஜராதிஷமனாய நம, ஓம் லோஹிதாய தனூனபதே நம, ஓம் பிரஷதஸ்வாய நம, ஓம் நபோயோ நயே.

ओम नभस्याय नमः, ओम भीजवाहनाय नमः, ओम अंगिरा गुरवे नमः, ओम आत्रेयाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वपावनाय नमः, ओम पावनाय नमः, ओम पुरजिते नमः, ओम शक्राय नमः, ओम त्रैविद्याय नमः, ओम नवावरणाय नमः, ओम मनोबुद्धये नमः, ओम अहंकाराय नमः, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम क्षेत्रपालकाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम बलनिधये नमः, ओम विगालाय नमः, ओम विश्वगालवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम अनुत्तराय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम श्रेयसे नमः, ओम निःश्रेयसप्रदाय नमः, ओम शैलाय नमः, ओम गगनकुंदाभाय नमः, ओम दानवारये नमः, ओम अरिंदमाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम जनकाय नमः, ओम चारुनिश्शल्याय नमः, ओम लोकशल्यदृशे नमः, ओम चतुर्वेदाय नमः, ओम चतुर्भावाय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम चतुरप्रियाय नमः, ओम आम्नायाय नमः, ओम समाम्नायाय नमः, ओम तीर्थदेवाय शिवालयाय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम महारूपाय नमः, ओम सर्वरूपाय नमः, ओम चराचराय नमः, ओम न्यायनिर्मायकाय नमः, ओम नेयाय नमः, ओम न्यायगम्याय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम सहस्रमूर्ध्ने नमः, ओम देवेन्द्राय नमः, ओम सर्वशस्त्रप्रभञ्जनाय नमः, ओम मुंडिने नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम विकृताय नमः, ओम दंडिने नमः, ओम नादिने नमः, ओम गुणोत्तमाय नमः, ओम पिंगलाक्षाय नमः, ओम बह्वक्षाय नमः, ओम नीलग्रीवाय नमः, ओम निरामयाय नमः, ओम सहस्रभाहवे नमः, ओम सर्वेशाय नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम सर्वलोकधृषे नमः, ओम पद्मासनाय नमः, ओम परमज्योतिषे नमः, ओम पारंपर्यफलप्रदाय नमः, ओम पद्मगर्भाय नमः, ओम महागर्भाय नमः, ओम विश्वगर्भाय नमः, ओम विचक्षणाय नमः, ओम परावरज्ञाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वरेण्याय नमः, ओम महास्वनाय नमः, ओम देवासुर गुरुदेवाय नमः, ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, ओम देवासुर महामित्राय नमः, ओम देवासुर महेश्वराय नमः, ओम देवासुरेश्वराय नमः, ओम दिव्याय नमः, ओम देवासुर महाश्रयाय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम अनयाय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम देवतात्मने नमः, ओम आत्मसंभवाय नमः, ओम सद्याय नमः, ओम महासुरव्याधाय नमः, ओम देवसिंहाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम विभुधाग्रचराय श्रेष्ठाय नमः, ओम सर्वदेवोत्तमोत्तमाय नमः, ओम शिवज्ञानरताय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्रीकिश्रीपर्वतप्रियाय नमः, ओम वज्रहस्ताय नमः, ओम सिद्धखड्गाय नमः, ओम नरसिंहनिपातनाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम लोकचारिणे नमः, ओम धर्मचारिणे नमः, ओम धनाधिपाय नमः, ओम नंदिने नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नग्नव्रतधराय नमः, ओम शुचये नमः, ओम लिंगाध्यक्षाय नमः, ओम सुराध्यक्षाय नमः, ओम युगाध्यक्षाय नमः, ओम युगापहाय नमः, ओम स्वधाम्ने नमः, ओम स्वगताय नमः, ओम स्वर्घिणे नमः, ओम स्वराय नमः, ओम स्वरमयस्वनाय नमः, ओम बाणाध्यक्षाय नमः, ओम बीजकर्त्रे नमः, ओम कर्मकृते नमः, ओम धर्मसंभवाय नमः, ओम दंभाय नमः, ओम लोभाय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम सर्वभूतमहेश्वराय नमः, ओम श्मशाननिलयाय नमः, ओम त्रयक्षाय नमः, ओम सेतवे नमः, ओम अप्रज्ञाकृतये नमः, ओम लोकोत्तरस्फुटालोकाय नमः, ओम त्रयंबकाय नमः, ओम नागभूषणाय नमः, ओम अंधकारये नमः, ओम मखद्वेषिणे नमः, ओम विष्णुकंधरपातनाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्रातिधर्ता पञ्चदशस्त्वास्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु प्रोगमुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु बृहत्सामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु सम्रालासि प्रतीचीदिगा आदित्यास्ते ए देवा अधिपतयः वरुणो हेतीनां प्रातिधर्ता सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु मरुत्वतीया मुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु वैरूपज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरिम्ना प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु स्वराळस्युदि ईचीदिङ्मरुतस्ते देवा अधिपतयः सोमो ओहेतीनां प्रातिधर्ता एकविज्ञेशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतु निष्के वल्यमुक्थमव्याथायै स्तभ्नातु वैराजज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषाजस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरिम्णा प्राधन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु अधिपत्न्यसि बृहति दिग्विश्वे एते देवा अधिपतयः बृहस्पतिर्हेतीनां प्रातिधर्ता त्रिणवत्रयस्त्रिज्ञशौ त्वा स्तोमौ पृथिव्याग्श्रायतां वैश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्याथायै स्तभ्नीताम् शाक्वररैवते सामानि प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरिम्णा प्राथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे ए संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजामानं च साधयन्तु अयं पुरो हरिकेशः सूर्या रश्मिस्तस्यारथकृत्सश्च रथौजाश्च सेनानी ग्रामन्यौ पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चात्सरसौ दङ्क्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुषे

दद्मः अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्या रथस्वनश्च रथे चित्रश्च सेनानी ग्रामन्यौ।

0: दद्मः
1: अयमुपर्यर्वाग्वासुस्तस्यासेनजिच्चासुषेनश्च सेनानी ग्रामन्यौ
0: उर्वशी च पूर्वचित्तिश्च।

0: आसोवाजिन इषग्स्तोतृभ्य आभार सो अग्निर्यो वसुर्गृणे संयमायन्ते धेनवाः समर्वन्तो रघुद्रुवः सज्ञे सुजाता सूरय इषग्स्तोतृभ्य आभार
1: उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीनीश आसने
0: उतो न उत्पूपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषग्स्तोतृभ्य आभार अग्नेतमद्याश्वन्नस्तोमैः क्रतुन्न भद्रज्ञ हृदि स्पृशम् हृध्यामात ओहैः अधाह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य

0: In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Khilone ki chesta, khilone ki hi sukh dukh ke liye nahi hai. Khilone ki chesta खिलाड़ियों के सुख दुख के लिए है. दूसरी बात, खिलौने की चेष्टा, खिलौना अपने संकल्प से चेष्टा नहीं करता. खिलौना जो चेष्टा करता है खिलाड़ी के संकल्प से चेष्टित होता है. तुम यदि शतरंज के खिलौने की भूमिका में हो, चेष्टा तुम्हारी रहेगी कि परमात्मा की रहेगी? बोलो, तुम परमात्मा हो कि खिलौने हो? बस खत्म हो गई बात. हो गई खत्म बात. तुम खिलौने हो तो बात खत्म हो गई बात. फिर कोई समस्या? जाहि विधि राखे राम, ये भाव है. ये तुम दुराग्रह क्यों करते हो कि ऐसा ही होना चाहिए? समर्पण की भावना भक्ति में आनी चाहिए, और जब तक भक्त में समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक भक्त सुखी नहीं हो सकता है. और वास्तव में भक्त कभी दुखी होगा भी नहीं. भक्त और अभक्त में यही तो अंतर है. भक्त कभी दुखी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? भक्त अपने को खिलौने की भूमिका में प्रस्तुत करता है और भगवान को खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है. महाराज, तुम जैसे खेलना हो खेलो, जैसे खेलना हो खेलो. मुझे ऊंट बनाकर तुमको खेलनी है, ऊंट बना दो, हम ऊंट ही बनकर खेलेंगे. मुझे हाथी बनाकर तुमको खेलनी हो तो हाथी बनाकर खेलो, हम हाथी बनेंगे. हमारा कोई दुराग्रह नहीं है. जैसे लकड़ी का कोई दुराग्रह नहीं रहता है कि मुझे ऊंट ही बनाओ, मुझे सिपाही मत बनाओ, मुझे राजा ही बनाओ, सिपाही न बनाओ. लकड़ी के लकड़ी का ही पूर्वाग्रह रहता है. खिलौना बनाने वाला खिलाड़ी उसी लकड़ी में से किसी टुकड़े को राजा बना देगा और किसी टुकड़े को हाथी बना देगा, किसी टुकड़े को ऊंट बना देगा, किसी टुकड़े को सेना बनाएगा, किसी टुकड़े को वजीर बनाएगा. उन लकड़ी के टुकड़ों का पूर्वाग्रह रहता है, मुझे यही बनाओ. वो ये कहते हैं कि तुमको जो बनाना है बनाओ, जो बनाकर खेलना है बनाओ, खेलो. हाथी बनाओ तो हाथी बन जाएंगे, ऊंट बनाओ ऊंट बन जाएंगे, राजा बनाओ राजा बन जाएंगे, प्रजा बनाओ प्रजा बन जाएंगे, सिपाही बनाओ सिपाही बनाओ बन जाएंगे, मंत्री बनाओ मंत्री बन जाएंगे. तुमको जो बनाकर खेलना है सो बनाओ और खूब खेलो, हमें नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं है. हाँ, दिन भर सिंहासन में बिठा दो तो बैठ जाएंगे राजा बनाकर. हैं, राजा बनाकर दिन भर सिंहासन में बिठाओ तो हम सिंहासन में बैठे रहेंगे. सिपाही बनाकर बंदूक लटकाकर दरवाजे में खड़ा करना हो तो खड़ा कर दो, हम ही खड़े हो जाएंगे. यदि मैं दरवाजे में खड़े होकर दिन भर चौकीदारी पहरेदारी करूं बंदूक बोकर लेकर, इससे तुम प्रसन्न होते हो तो हमको तो कुछ करना ही नहीं. तुमने वहां खड़ा कर दिया, हम खड़े हो गए. तुमने सिंहासन में बिठा दिया हमको, उससे तुम खुशी होते हो प्रसन्न होते हो तो हम वहीं बैठे रहेंगे. और तुम यदि खुशी होने के लिए प्रसन्न होने के लिए मुझे सिंहासन से उतार कर बंदूक लटका कर चौकीदारी बना दिया गेट में और किसी और को सिंहासन में रखकर तुम खुश होते हो तो वही करो महाराज, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम खिलाड़ी हम खिलौने, बस इतना हम जानते हैं। और आपने हमको बनाया ही खिलौने के रूप में खेलने के लिए, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है, मैं खिलाड़ी खिलौना हूं, खिलौना का और कोई प्रयोजन नहीं होता, खिलाड़ी जैसे खेले वैसे परिचालन होने बायक खिलौनों का और कोई स्वतंत्र परिचालन अपनी इच्छा से नहीं होता। समर्पण है भैया, हाँ ये भाव यहां व्यक्त कर रहे हैं।

யத்கர்மாச்சரிதம் மயா ச பவத் பிரித்யை பவத்தி வதத். मैं जो कुछ चेष्टा करूं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हो, क्योंकि संभो, यह संबोधन है फिर, हे संभो, संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्। मैं तो क्या हूं, करण हूं, साधन हूं। करण माने साधन, करण का अर्थ क्या होता है, साधन। संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, आपकी प्रसन्नता का मैं साधन हूं। मैं तो एक खिलौना हूं, एक साधन हूं। कुतूहलस्य करणम्, संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, मच्चेष्टितम् निश्चितम्। इसीलिए मैं करण हूं, साधन हूं, इसलिए मेरी जो चेष्टा है, मच्चेष्टितम, मेरी जो चेष्टा है, मेरी जो क्रिया है, वह निश्चितम। केना, किसके द्वारा निश्चितम, त्वया निश्चितम, ये त्वया निश्चितम। मैं कुतूहल का साधन हूं, मेरी जो चेष्टा है वह तुम्हारे द्वारा निश्चित है। मेरी अपनी निश्चय से मेरी चेष्टा नहीं है, तुम्हारे निश्चय से मेरी चेष्टा है। त्वया निश्चितम मया चेष्टितम, बस। तुम्हें क्या कहनी है बोलो, तुम्हें क्या कहना है, हैं? त्वया निश्चितम मया चेष्टितम। पहले तुमने फिक्स किया, मैंने वैसा ही किया। तुमने जैसा करवाया, मैंने वैसा ही किया। आप कभी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को अलार्म लगाते हो, है ना? जितने बजे उठना होता है उसी हिसाब से आप अलार्म फिक्स करते हो। मोबाइल में अलार्म फिक्स किया टाइम में और आप सो गए, और जिस टाइम के लिए आपने अलार्म फिक्स किया था, निश्चितम त्वया निश्चितम, और ठीक उसी टाइम में अलार्म घंटी बज जाएगा जोर जोर से, अब तुम अलाराम को दो थप्पड़ लगाओ। मैं गहरी नींद में सोया था, तू हल्ला करता है, अलाराम क्या जवाब देगा बोलो। त्वया यत निश्चितम तत् मया चेष्टितम, बस खत्म। मोबाइल तुमको वही जवाब देगा ना, तुमने जो फिक्स किया था मैंने वही किया, मैंने क्या गलती की, मेरी क्या गलती है, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं। यदि मैं अपनी मर्जी से क्रिया करता, यदि मैं अपनी मर्जी से चेष्टा करता, तब तो तुम मुझे दोष लगा सकते थे। तो मैं अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो खिलौना हूं, मैं तो करण हूं, साधन हूं। मोबाइल क्या है, तुम्हें जल्दी उठने का साधन है कि नहीं बोलो। मोबाइल तुम्हें जल्दी उठना है तो जल्दी उठने का साधन है मोबाइल, और तुमने उसको संकेत किया कि इतने बजे बजना, निश्चितम फिक्स किया है, तो साधन होने के कारण उसने ठीक जितने बजे तुमने फिक्स किया निश्चितम, उतने बजे वो हल्ला कर दिया उसने। तुम अब उसको शाबाश दो, शाबाशी दो कि गाली दो, क्या करना चाहते हो, शाबाशी देना चाहते हो कि गाली करने देना चाहते हो?
शाबाशी है कि उसने ठीक टाइम पर उठा दिया। अब बुरा यह है कि वो निद्रा भंग हो गई, ये अनुकूल और प्रतिकूल तो व्यक्ति अपनी कल्पना करता है। दूसरी बात है कि तुम अपने तरफ पूरी तरह खिलौना हो तो तुम्हारे लिए अनुकूल प्रतिकूल की कोई परिभाषा बनी ही नहीं सकती है। खिलौना अपने को यदि खिलौना मानता है, खिलौने की भूमिका में रहता है, तो खिलौने की ये च्वाइस नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस तरह खेलो, इस तरह खेलो तो मैं खिलौना बनूंगा, मेरे कहे अनुसार तुम खेलो तो मैं खिलौना बनूंगा, मेरे कहे अनुसार नहीं खेलते हो तो मेरी इच्छा के विपरीत खेलते हो तो मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा, तो खिलौना ऐसा पूर्वाग्रह नहीं कर सकता। जैसे खेलना हो खेलो। खिलौने का मतलब क्या? अरे भाई शादी किया था उस समय खुश हुए थे, अब वियोग में तुम दुखी हो जाओ, वो उसी तरह खिला रहा है तो क्रोध हो दुखी हो जाओ। ये महाराज त्वया चेष्टितम, ये तो तुम्हारा फिक्स किया हुआ है महाराज, किसके साथ शादी होना है ये तुमने फिक्स किया था, तुमने फिक्स किया था उससे साथ शादी हो गए, मेरी कोई च्वाइस नहीं थी, मेरे कोई संकल्प नहीं था, और तुमने कह दिया कि अब तुम अलग हो जाओ तो तुम्हारी संकल्प है तो अलग हो जाते हैं, हमको कोई अर्ज नहीं है। त्वया चेष्टितम, त्वया निश्चितम, मया चेष्टितम तत् त्वया निश्चितम, मैं जो कुछ भी चेष्टा करता हूं ये भगवान मैं तो खिलौना हूं, और त्वया निश्चितम तुम्हारा निश्चय किया हुआ ही मैं चेष्टा करता हूं। तुमने निश्चय कर दिया था महाराज प्रेमपुरी आश्रम में जा, शिवानंद हरि सुन, तुमने निश्चय किया था महाराज मैं वैसे ही किया। शिवानंद हरि खत्म होने के बाद तुम निश्चय करते हो महाराज सब्जी भी खरीद के जा, तो महाराज ग्रांट रोड भी चला जाऊंगा। नहीं नहीं जल्दी आ जा, महाराज ठीक है जल्दी आ जाते हैं। तो या निश्चितम मया चेष्टितम, इतना वाक्य तुम याद करो भाई जीवन भर शिव जी के सामने खड़े होकर यही कहो। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम, क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितम मया च भवत प्रीत्यै भवति वतत। छोटे बच्चे के सामने बाप खिलौना बनता है। बच्चा कहता है कि पापा तुम घोड़े बन जाओ, टिक टिक घोड़ी चल मेरी घोड़ी, टिक टिक घोड़ी चल मेरी घोड़ी। बच्चा पीठ में चढ़ता है, बाप को घोड़ी बनाता है, इधर चल बाप उधर ही चलता है, उधर चल बाप उधर ही चलता है। बाप ये नहीं कहता कि मैं तेरा बाप हूं घोड़ा नहीं हो, क्यों ऐसा करता है बाप बोलो? तू खुश हो जा बेटा, बस तू प्रसन्न हो जा, घोड़ा बनकर तू प्रसन्न होता तो हम घोड़े भी बन जाएंगे बेटा, जिधर जाकर प्रसन्न होता उधर ही जाएंगे। बाप की घोड़ा बनकर चेष्टा करना बच्चे की प्रसन्नता के लिए है। इसी तरह तमाम जीव की चेष्टा करके, कोई मां बन रही है, कोई बाप बन रहा है, कोई पत्नी बन रही है, कोई पति बन रहा है, कोई भाई बन रहा है, कोई बंधु बन रहा है, कोई बहन बन रही है, कोई नौकर बन रहा है, कोई मालिक बन रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई स्वामी बन रहा है, ये सारी की सारी चेष्टाएं उसी की प्रसन्नता के लिए महाराज, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, बस तुम जो बनाओ वो बनने को तैयार है। राजा बनाओ तो ठाट से बैठकर खाएंगे मालपुआ हलवा,
शुगर होगा तो क्या करोगे, नहीं खाएंगे। तुमने कहा शुगर हो गया अब ना खा, नहीं खाएंगे। शुगर नहीं है खूब खा तो खूब खाएंगे। तुम कहोगे कि नहीं महाराज अब तो भीख मांग के देख। बोले हम भीख मांगेंगे भिखारी बनेंगे, तुम खुश हो जाओगे? बोले हां जरा देख तो सही भीख मांग। अरे भीख मांगना कोई असंभव काम नहीं है बेटा, भीख तो मैंने भी मांगी थी, तू भी एक बार भीख मांग के देख तो। भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। बेटा हाथ में खप्पर लेकर तो मैं भी भटका था दर दर, और एक माता को देखा तो हमने कहा मां कृपा करके जल्दी से भिक्षा दो। और वो अन्नपूर्णा ने जब लाकर मेरे खप्पर में भिक्षा डाली, बड़ा प्रसन्न होकर मैंने उस भिक्षा को खाई है। अरे भीख मांगना तो काम तो हमने भी किया था। जब मैं खुद भिखारी बनकर भीख मांग सकता हूं तो भी तो जरा देख ले भीख मांग कर। तुम क्यों दुखी होते हो भाई, हैं? तुम क्यों दुखी हो? मेरे शिव ने मेरे परमात्मा ने मुझे इस योग्य समझा, मुझे इस काम में लगाया है, प्रसन्नता से मांगो भिक्षा। जो भिक्षा मिलती है वो लाओ, भगवान के सामने धरो। परमात्मा तुमने भीख मांगने पर भेजा था, ये लेके आए हैं, देख ले क्या क्या आया है। तुमको खानी हो तो पहले तू खा। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पंच प्राणेभ्य स्वाहा। तुमको खाओ। खा लिया महाराज? बोले शिव जी कहेंगे खा ले बस। अब मैं खाऊं? बोले खा, खा लिया हो गया। वो भी देख लो घर की गर्म रोटी भी खा ली कि नहीं, है? महाराज के पकाया हुआ, नौकर का पकाया हुआ, रसोईया के पकाया हुआ गरम गरम भी तो खा ली ना। अब जरा तीन दिन की बासी भी तो मांग कर खा के देख लो कैसा मजा आता है। शिव जी को मजा आ सकता है तो तुमको नहीं आ सकता है मूर्खो, है? बूढ़े बैल के ऊपर जब चढ़ के चल सकते हैं शिव जी तो तुम नहीं चल सकते हो दो कदम? और तुमको होंडा सिटी चाहिए बंबई में? बोलो। भगवान शिव कैलाश में बैठकर नंगे पांव, कल बताया ना भगवान शंकराचार्य जी ने, महाराज नंगे नंगे पांव पहाड़ों में घूमते हो, तुम्हारे पांव में जूता नहीं है, मेरे पास एक जूता है, है? वो जूता पहनकर चला करो महाराज। कल नहीं बताया था मेरा चित्त रूपी जो जूता है, हा? चेत पादुका, ये मेरा चित्त रूपी जूता पहनकर चला करो। वो जब पहाड़ों में घूम सकते हैं तो तुम नहीं घूम सकते हो? वो नंगे पांव घूम सकते हैं तो तुम नंगे घूमो? हाँ, वो जंगलों में रह सकते हैं तो तुम नहीं रह, तुमको बंबई में ही रहना है। जाई विधि राखे रामताई विधि रहेंगे। तुम खिलौना भी हो और मालिक भी बनना चाहते हो? मालिक ने तुम्हें खिलौना बनाया और तुम अपने आप को मालिक बनना चाहते हो? अब भगवान को कहते हो कि भाई महाराज रसोईया नहीं है, एक नया रसोईया खोज कर ला दो। तेरी मूर्ख, रसोईया नहीं है, तू ही रसोईया बन जा ना। मुझे रसोईया बनाने के लिए भगवान ने रसोईया को भगाया है, जरा रसोईया बनकर देखूं तो सही, रसोईया खुद बन जाओ, हैं? अरे ईश्वर जैसे रखे वैसे रहो। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचम अखिलम, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, हाँ गुनगुनाता हूं मैं, है?
கிரீடார்த்தம் சிருஜசி பிரபஞ்சமகிலம் கிரீடா மிருகாஸ்தே ஜனாம் யத் கர்மா சரிதம் மயா ச பவத் ப்ரித்யை பவத்யேவ தத் சம்போ ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணம் மச்யஷ்டிதம் நிஷ்சிதம் தஸ்மான் மாமக ரக்ஷணம் பசுபதே கர்த்தவ்யமேவ த்வயாய. அந்திம் லைன் பட மார்மிக ஹ, ये अंतिम लाइन बहुत मार्मिक है. तस्मान मामक रक्षणम पशुपति, हे पशुपति मैं तुम्हारे खेल के लिए खिलौना हूं, मेरी रक्षा तुम करते रहोगे तो जब तक मैं सुरक्षित रहूंगा तुमको खेलने का भरपूर आनंद आएगा. मैं ही तुम खेलते खेलते मैं ही टूट गया तो फिर खेल में मजा बिगड़ जाएगा कि नहीं बोलो है? खेलते खेलते खेल के साधन यदि टूट जाएंगे तो खेल में मजा बिगड़ेगा कि नहीं है? दूसरा खिलौना खोज के लाना पड़ेगा. जब तक खिलौना ठीक फिट सही खिलौना नहीं मिलेगा खेल में मजा नहीं आएगा. और आपने मुझे सही खिलौना मानकर ही इस भूमिका में रखा है. स्त्री की भूमिका में मुझे फिट समझा इसलिए आपने स्त्री बनाकर मुझे उस भूमिका में रखा है. और यदि आपने सावधानी नहीं रखी और मेरी रक्षा आपने नहीं की और खेलते खेलते मैं टूट गया या नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, तुम्हारे बीच में मजा खत्म हो जाएगा. फिर किसी और को स्त्री की भूमिका में लाना पड़ेगा तभी खेल में मजा आएगा. पुरुष की भूमिका में मुझे योग्यता समझी इसलिए मुझे पुरुष के रूप में अपने खड़ा किया, बिठाया उसके भूमिका में, और मैं वहीं फिट हूं, मैं खेल रहा हूं. लेकिन रक्षा तुम करना महाराज. यदि खेलते खेलते मैं टूट गया फिर तुम्हारे खेल में मजा आ जाएगा, खत्म बिगड़ जाएगा, किरकिरा लग जाएगा, फिर दूसरा खोजना पड़ेगा, तीसरा खोजना पड़ेगा. इसीलिए रक्षा करते हुए खेलना, खिलौने की रक्षा. खिलाड़ी अपनी खिलौने की रक्षा जितना रखेगा, ख्याल जितना रखेगा, वो खिलौने उस खिलाड़ी को उतना ही आनंद देता रहेगा. बच्चों को देखा है कि नहीं, बाप छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी लाकर देता है, अपने आप करोड़ों की गाड़ी में चढ़ता है, बच्चों को 50 रुपया की प्लास्टिक की गाड़ी लाकर दे देता है, लो. और अपनी गाड़ी सड़कों में दौड़ती है और उसकी गाड़ी कमरे के अंदर दौड़ती है ना? ठीक है बेटा, वो बेटा उसी से प्रसन्न है, खेल रहा है कमरे में, इधर से उधर दौड़ाता है, उधर से उधर दौड़ाता है, उधर से उधर दौड़ाता है. खेलते खेलते जब खिलौना टूट जाता है, गाड़ी टूट जाती है, तो बच्चा बाप से जाकर कहता है कि पापा मेरी गाड़ी टूट गई, रोने लगता है, टूट गई गाड़ी. बाप कहता है कि अरे क्यों टूटी, सावधानी से खेलना चाहिए था, ध्यान से खेलना चाहिए था. बाप डांटता है कि नहीं है? अब बेटा क्या कहता है, मुझे दूसरी गाड़ी ला दो. बाप जब तक दूसरी गाड़ी नहीं लाएगा खेलने का मजा उस बच्चे का गया कि नहीं है? इसीलिए भगवान से कह रहे महाराज टूटे नहीं भाई ये खिलौना, ये खिलौना बीच में टूटे नहीं, क्योंकि इससे आपको ही आनंद आता है. आपने खेल के आनंद लेने के लिए बनाया है, हम उसके योग्य हैं, हम जैसे खिला रहे हो ऐसे खेल रहे हैं. हमारे आनंद के लिए हम नहीं चल रहे हैं, तुम्हारी आनंद के लिए हम चल रहे हैं. लेकिन इस खिलौने की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है, बस आप जितनी सुरक्षा करोगे उतना ही
आपको उतने आनंद आएगा। क्या सुंदर भाव है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवति वतत संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम। स्वस्य माने शिव, संभु के तुम्हारे, मैं तुम्हारे कुतूहल यानी प्रसन्नता का करण हूं, साधन हूं। मच्चेष्टितम निश्चितम, मेरी जो चेष्टा है वो तुम्हारे द्वारा निश्चित चेष्टा है। हाँ, तुमको जो इच्छा लगा वही आपने चेष्टा निश्चित की, उसी निश्चय अनुसार मैंने चेष्टा की है। रोटी बनाते बनाते रोटी बिगड़ गई तो वो तो तुम्हारी फिक्स किया हुआ चेष्टा है, मुझे क्या पता कैसे ठीक बनती है कैसे बिगड़ती है। तुमको अच्छा बनाना था तो फिर तुमको अच्छी बुद्धि देनी थी। तुमने जैसी बुद्धि दी वैसे हमने बना दी। अब तुम कहोगे कि रसोई अच्छी नहीं बनी, तुम्हारा दिया हुआ बुद्धि से हमने तुम्हारे लिए रसोई बनाया है। मैं अपनी बुद्धि से बनाया होता तब ना तुम मुझे डांटते कि तो अच्छी नहीं बनाई है। तुम्हारी दी हुई बुद्धि है, तुम्हारे लिए रसोई बना रहे हैं। अब जैसे बनी तुम्हारी बुद्धि से जैसे बनी खाओ वैसे। तो अच्छी खानी हो तो फिर अच्छी बुद्धि दो, कल हम अच्छा बना देंगे महाराज, उन्हीं को जवाब दो। हा? ये हुआ और वो हुआ मत बोलो, अच्छे बुद्धि दो तो अच्छा काम करेंगे तुम्हें। तस्मान माम करक्षणम पशुपते कर्तव्यमेव त्वया, तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा होनी चाहिए, मैं अपनी रक्षा खुद अपने आप नहीं करूंगा। बस ये समर्पण है भक्तों की, यह आत्मनिवेदन है, यही समर्पण है। इसी में भक्त सुखी रहेगा, इसी में भक्त आनंदित रहेगा। चलो ये 10 दिन का ये व्याख्यान विशेष संत प्रवचन आज पूरा हो गया है। यूं तो पेपर के अनुसार कल तक था, 28 तक था, तो कल एक विशेष कार्यक्रम आने के कारण एक दिन पहले ही ये विश्राम दे रहे हैं, और आगे के जो श्लोक हैं वो फिर अगले साल है ना चिमन भाई। हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: शांति शांति शांति
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शाइवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: यज्ञ करना और कराना, विद्या अध्ययन करना और कराना, और साथ में दान देना तो क्षत्रिय का धर्म है, पर दान लेना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है। वैश्य का धर्म है ब्राह्मण अनुगामी बने, ब्राह्मण का अनुगामी बने और कृषि का कार्य करें, गौपालन का कार्य करें, अथवा ये व्यापार का कार्य करें। ये वाणिक का धर्म, निय का धर्म है। और उसी प्रकार शूद्र का धर्म है कि वो सेवा करे, इन तीनों वर्णों की सेवा करे, ये उसका धर्म है नारायण। पर आज के समय पर हम अपने अपने धर्म को भूल गए, याद नहीं रहा, और जिसके कारण भटक गए। इस प्रकार सबके धर्म को शास्त्र निर्धित करते हैं, ब्राह्मणोचित धर्म है। यज्ञ करना और कराना, महाराज हम यज्ञ करते हैं, वातावी नामक असुर उसमें नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण लोग आए दक्षिण से और इधर प्रार्थना की और कहा कि बीच में ये असुर हमें तंग देता है, करता है। और उसी समय विंध्यांचल पर्वत भी हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा था कि मैं भी सुमेरु पर्वत के समान श्रेष्ठ बन जाऊं, और उसके लिए बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे थे। वशिष्ठ कुंभक ऋषि से प्रार्थना करने पर कुंभक ऋषि ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार किया और दक्षिण की यात्रा करने के लिए मन में विचार किया। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि तुम परोपकार के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे साथ मैं आऊंगा। भगवान विश्वनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया। जब जा रहे थे तो मार्ग में विंध्यांचल ने देखा कि महामुनि अगस्त आ रहे हैं, उनकी सेवा सत्कार सम्मान के लिए ये विंध्यांचल आगे बढ़े। तो विंध्यांचल के मन में घमंड है, मुनिवर पहचान गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं वृद्ध हूँ, तुम्हारी ऊंचाई बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे सिर झुकाकर लेटकर तुमने मुझे प्रणाम किया है, ऐसे ही तब तक लेटे रहो जब तक मैं दक्षिण से वापस लौट करके न आ जाऊं। ना तो मुनि अगस्त दक्षिण से वापस लौट करके आए और न विंध्यांचल खड़ा हुआ। आज भी देखें तो विंध्यांचल पर्वत को देखकर ऐसा लगता है जैसे शीश झुकाए बैठा हो। विंध्यांचल पर्वत को लेकर जैसे ही पार करके महामुनि अगस्त दक्षिण में गए और समुद्र के अंदर छुपने वाला वातापी असुर जो ब्राह्मणों को अत्यंत त्रास दे रहा था, मुनि अगस्त ने अंजलि में समुद्र लिया, ओम नमः शिवाय कहकर समुद्र के जल को सारा पी गए और इसके साथ उस असुर को निकाल करके समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों का कष्ट निवारण कर दिया। इस प्रकार सातों समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को पीने की ताकत महामुनि अगस्त में कहां से आई? बोले ये तो भगवान शिव के मंत्र का ही प्रभाव है। ओम नमः शिवाय कहकर, शिव का नाम लेकर के कुंभक ऋषि समुद्र को पी गए और कहा कि जब समुद्र के को पी गए तो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव छटपटाने लगे, तड़फड़ाने लगे और उन्हें बहुत दुख होने लगा, त्राही त्राही मच गई। समुद्र अव तो रुदन करने लगे और प्रार्थना करने लगे, मुनिवर कृपा करो, कृपा करो। इस प्रकार जब उनसे प्रार्थना करते हैं तब महामुनि अगस्त उन्हें अपने शरीर से निकाल करके बाहर करते हैं। इस प्रकार समुद्र से इसको प्रकट किया महामुनि अगस्त ने। अगस्त भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसे ऋषियों के लिए कहा वशिष्ठ कुंभो भोगोतमाय। गौतम ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने भगवान त्रंबकेश्वर की स्थापना की। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि निवास करते हैं। भगवान शिव के परम अनन्य अनन्य भक्त हैं। भगवान शिव की उपासना करते हैं, इतनी बड़ी उपासना करते हैं कि उनके उपासना के फल स्वरूप एक बार अकाल पड़ गया, कहीं कुछ खाने को नहीं है, सारी वनस्पति नष्ट हो गई है। गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से, भगवान शिव की आराधना के प्रभाव से, गायत्री के जप के प्रभाव से उनके चारों तरफ हरियाली है। और खूब गौतम ऋषि जो उनके पास आता है उसे भगवान शिव के कृपा से उसे खूब अन्न जल पिला करके तृप्त करके उसे भेज रहे। खूब ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, खूब सबकी सेवा कर रहे थे, सबको तृप्त कर रहे थे, कोई भूखा नहीं जाता था। भगवान शिव का अन्न क्षेत्र भंडारा निरंतर चल रहा था। देखकर ब्राह्मणों के मन में द्वेष हो गया कि महामुनि अगस्त, उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि का यश बढ़ रहा है। इस यश को देख करके ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या हो गई और उन्होंने ईर्ष्या के कारण एक षड्यंत्र किया। एक बूढ़ी सी गाय जो मरणासन पर थी, महामुनि जब स्नान करके ब्रह्म कुंड से निकल रहे थे, स्नान करके जैसे जाते तो मार्ग में बूढ़ी गाय को खड़ा कर दिया और वो गाय को जैसे उन्होंने हाथ आवाज छुआ तो गाय वहीं पर गिर पड़ी, मर गई। गौ हत्या सामने खड़ी हो गई और गौ हत्या का दोष मान करके सभी ने उनका बहिष्कार किया। कहा कि देखो आपके द्वारा गौ हत्या हुई है, गौतम ने गौ हत्या की है। इस प्रकार ये हत्या का दोष गौतम के ऊपर जब आरोपित कर दिया गया तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव का ओम नमः शिवाय कहते हुए जप किया और जप करके उनके इस गौ हत्या का निवारण करने के लिए स्वयं भगवान त्रंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने साक्षात रूप से त्रिगुण देव प्रकट होकर के ये उद्घोष किया कि गौतम के द्वारा ये गौ हत्या नहीं हुई है, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। भगवान शिव साक्षात रूप से प्रकट होकर उनके गौ हत्या के दोष से उन्हें मुक्त करते हैं। इस प्रकार ऐसी भगवान शिव में अविचल भक्ति किसके अंदर है? बोले गौतम ऋषि के अंदर है। ये बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ अगस्त गौतम जैसे जो मुनि हुए हैं, देवार्चित से कराय, माने इन चित अर्थ यहाँ क्या है, इन सब ने शिव की अर्चना की। अर्चना का मतलब होता है पूजा, शिव पूजन। वशिष्ठ ने शिव पूजन किया, अगस्त ने शिव पूजन किया, गौतम ने शिव पूजन किया, आदि आदि मुनियों ने देवार्षित चेत से कराया। भगवान शिव शेखर का अर्थात चंद्रमौली भगवान सदा शिव का इन्हों के द्वारा अर्चन हुआ, पूजा हुई, इनकी पूजा हुई, इन्होंने पूजा की है, भगवान का अर्चन किया है। भगवान का अर्चन पुष्प से है, भगवान का अर्चन बिलु पत्र से है, भगवान का अर्चन गंध अक्षत तिल यव आदि से भगवान का अर्चन है। इन सब से भगवान का अर्चन करना चाहिए, अर्थात इन्हें भगवान को चढ़ाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात फल चढ़ाओ भगवान शिव को बहुत अच्छी बात है, फूल चढ़ाओ भगवान को अच्छी बात है, फूल नहीं चढ़ा सकते हो तो पत्ता चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। बिल्व पत्रादि, तुलसी पत्रादि भगवान शिव में चढ़ाएं। बोले ये नहीं चढ़ा सकते हो तो कम से कम एक लोटा जल तो प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शिवार्चन करना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। बोली यदि कहीं किसी काल में आप कहें कि हमारे हमें शिव बाण की प्राप्ति न हो, शिव का बाण नहीं मिलता है अर्थात शिवलिंग नहीं मिलता है, तो शिवार्चन कैसे करें, कैसे करें भगवान शिव की पूजा, तो कहा कि और कुछ नहीं मिलता, अंगुष्ट मात्रम, ये जो आपके हाथ में अंगूठा है ना, यही तो शिव है, यही बाण है, कुछ नहीं है। तो अपने हाथ की प्रतिष्ठा करके, हाथ को रख करके, अंगूठे को ही शिव समझ करके, इसीलिए हमारे हाथ में अंगूठे को ब्रह्म कहा गया है और इस तर्जनी उंगली को जीव कहा गया है, और ये तीनों उंगलियां जो है नारायण, ये तीनों गुण हैं, इसीलिए पांच हैं। ये तीन जो उंगलियां हैं जिनमें से सबसे नीची उंगली कनिष्ठिका उंगली जिसको कहते हैं ये सतोगुण है, और अनामिका उंगली ये रजोगुण है, मध्यमा उंगली ये तमोगुण है, ये तीन गुण है। इन तीन गुणों के साथ तीन तीनों गुणों को अलग करके अर्थात अपने आप में से तीनों गुणों को अलग करके अथवा सतोगुण को इतना बनाएं कि हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ता है किसकी अधिकता दिख पड़ती है। बोले तमोगुण की सबसे ज्यादा अधिकता दिखाई देती है, उसके बाद रजोगुण की अधिकता दिखाई देती है, और हमारे भीतर सतोगुण अत्यंत कम है, कम है। उपासना के द्वारा अपने रजोगुण, अपने सतोगुण को इतना बढ़ा लें कि रज और तम को नून कर दें, और जब रज और तम दोनों न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सतोगुण बढ़ जाएगा, तो तब क्या होगा। बोले ये जो हमारी तर्जनी उंगली है ना, जिसे जीव कहते हैं, इस तर्जनी उंगली को मिला लो। बोले किसके साथ, ब्रह्म के साथ में, अंगूठे के साथ में। इसलिए तर्जनी उंगली जब अंगूठे से लग जाती, ये मुद्रा बनती है, तो इसे क्या कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा में बैठो। ज्ञान मुद्रा में हमेशा उपदेश देते हैं, बोले कौन, भगवान शिव, अर्थात ये अंगूठा ही ब्रह्म है। इसलिए अंगूठे को देखो, देखो देखो, देखने वाले को देखो, इस अंगूठे को देखो, और यही तो ब्रह्म है, ऐसा साक्षात शिव है, ऐसा समझ करके इसमें जल चढ़ाओ, इसी का अर्चन कर लो, भाव है नारा। भीम प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करते थे। भीम का नियम है कि जिस दिन वो शिव पूजा नहीं करेंगे, शिव का जल से अभिषेक नहीं करेंगे, भीम भोजन नहीं करेंगे। और भीम की आदत थी, पांचों पांडवों में भीम की आदत थी कि जैसे भोजन पूजन करके उठे तो उन्हें बड़ी जोर की भूख लगती थी, और पहला पहला काम होता था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत कर्म तजेत, सौ काम छोड़ो नहाओ, सौ काम छोड़ो पहले स्नान करो, और हजार काम छोड़ो क्या करो, बोले सौ काम छोड़ो स्नान करो, हजार काम छोड़ो तो भोजन करो, सहस्त्र तजेत, सहस्त्रम तजेत, सारे करो, हजारों कर्मों को छोड़ो, हरि भजेत, केवल भगवान का स्मरण करो। काम करना चाहिए, काम छोड़, दस काम छोड़ करके भी स्नान करना चाहिए, सौ काम छोड़ करके भी भोजन करना चाहिए, और हजार काम छोड़ करके भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र में कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, तो हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। तो उनका नियम था कि प्रतिदिन वो पूजन करते हैं, पूजनों उपरांत भोजन करते हैं, और आज कुछ विलंब हो गया है और वो यात्रा ही ऐसे करते हैं कि जहां जाएं उन्हें अगले पड़ाव पर कहीं न कहीं शिव मंदिर मिल जाए, तो शिव मंदिर मिल जाए तो भगवान का पूजन हो जाए, भोजन हो जाए, फिर आगे की यात्रा वनवास काल में पांडव आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। एक दिन की घटना थी कि बहुत देर हो गई, कहीं शिवलिंग नहीं मिला, भोजन का समय हो रहा है, आसपास कोई शिव मंदिर नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने सोचा कि भीम को कहीं आसपास शिव मंदिर नहीं मिल रहा है और जब तक ये शिव की पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, तो भीम ने क्या, अर्जुन ने क्या किया कि एक घड़े को लेकर उसे मिट्टी उल्टा करके मिट्टी में दबा दिया, तो घड़े का जो फायदा होता है वो गोलाकार में होता है, वो गोलाकार बना करके कह दिया कि भैया देखो यहाँ पर शिव है। भीम ने शिव समझकर बड़े प्रेम से पूजा की, पूजा करने के उपरांत भोजन कर लिया और भोजन करने के उपरांत जब बैठे थे, अर्जुन ने कहा भैया आज तुमने जहाँ, उन्होंने मन में विचार किया कि भीम पूजा तो करता है पर कुछ देखता तो है नहीं, इसने कुछ शिव है या नहीं है ये कुछ देखा नहीं और घड़े उसी को शिव समझ करके पूजा कर लिया, भीम को भगवत शिव तत्व का बोध नहीं, केवल ये स्थूल पूजा करते हैं, स्थूल भीम मोटी बुद्धि के हैं, स्थूल पूजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में जब संदेह हुआ, उन्होंने कहा भैया आज आपने पूजा की, वहाँ शंकर जी थे? भीम ने कहा हाँ थे, वहाँ तो शंकर जी थे। कहा तुमने ठीक से देखा कि वहाँ शंकर जी थे? बोले हाँ हाँ मैंने देखा वहाँ शंकर जी थे। अर्जुन ने सोचा कि मैं जाकर, चलो दिखाओ शंकर जी थे वहाँ, ले गए साथ में, ले गए साथ में, जब दिखाया और कहा यहाँ शंकर जी, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इन्हें दिखाऊं। उस घड़े को जब उठाने, भीम कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे शिव यहाँ न हो, भीम की निष्ठा है, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे शिव यहाँ न हो। ये कहना था कि अर्जुन ने पूरा बल लगाया, सोचा मैं इस घट को निकाल कर बाहर करके दिखाऊं, परंतु वो बिल्कुल घट वहाँ से हिला भी नहीं, अर्थात भगवान शिव ने ये सिद्ध कर दिया कि भाव करके जो मुझे जिस रूप में भसता है मैं उसी भाव से उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। यथा माम प्रवदन्ते तथास्ते भजामि, जो शिव के सर्वात्म भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसको व्यापक रूप में ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात भगवान शिव यदि घड़े के रूप में भीम को भगवान शिव मिल सकते हैं तो क्या आपको अंगूठे के रूप में नहीं मिल सकते? परंतु अंगूठे में ऐसी बुद्धि तो हो, ऐसा निश्चय तो है, यही शिव बाण है, शिव बाण समझ करके, भगवान शिव का बाण समझ करके किसी काल में किसी समय आपको शिवलिंग नहीं मिलता है तो बड़े प्रेम से आप इसका अर्चन करें, पूजन करें, पर तो भी करें। मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है कि तो भी करें, तो भी शिवार्चन छोड़े नहीं, भगवान शिव का अर्चन करके, पूजा करके, भगवान शिव के जल आदि को चढ़ा करके ये देवताओं ने पूजन किया। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, भगवान त्रिलोचन जिनके तीन नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान सदाशिव चंद्रमौली चंद्रचूड़ चंद्रनाथ भगवान आशुतोष के श्री चरणों में रहकर उनके चरणों का निरंतर स्मरण करें। भगवान शिव निराकार हैं, व्यापक हैं, सनातन हैं, निर्दोष हैं, निर्लेप हैं, असंग हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं भगवान शिव। और वही भगवान शिव जब महेश्वर के रूप में, वो निराक शिव तत्त्वम् न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वरः, हे महेश्वर आप किस रूप में हैं, ये हम वाणी कैसे कह सकती है, क्योंकि आप साकार रूप में भी हैं और आप निराकार रूप में भी हैं। कोई कहता है कि आप सगुण साकार हैं और कोई कहते हैं कि आप निर्गुण निराकार हैं, अथवा जो भी हैं आप सगुण साकार हैं अथवा निर्गुण निराकार हैं, भला ये बुद्धि कैसे जान सकती है। पर इतना जानते हैं हे शिव, हे प्रभु शिव तत्त्वम् न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, आप क्या हैं ये कौन जान सकता है, कौन बता सकता है, अर्थात आप क्या हैं का कहने का मतलब आप क्या नहीं हैं। आपका एक रूप ने अनेक रूप रूपाय, आपके अनंत अनंत रूप हैं। आप जब रुद्री पाठ करते हैं तो रुद्री पाठ करते हुए पंचम स्कंद अध्याय में आप ये बोलते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं अनेक रूपों में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं तस्कराणाम पतये नमो नमः। यहाँ तक कि जो तस्कर हैं चोर हैं वो भी कोई और नहीं है, वो भी तुम ही हो। श्रेष्ठ तो हो ही हो पर ये भी तुम ही हो। तो कहने का अभिप्राय ये, वो निकृष्ट से निकृष्टतम में अघोरे व्यो घोरे व्यो घोर घोर तरव्यो, भगवान शिव के लिए आया है कि आप अघोर हैं, इतने अघोर नहीं कि अघोर घोरे व्यो घोर घोर घोर तरव्य, अघोर से अघोर, अघोर से अघोर, अघोर से अघोर, अर्थात अत्यंत अघोरता में भी आप हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर भी आप हैं। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए आप कहते हैं ओम सद्धो जातम प्रपद्यामि सद्धो जाताय वे नमो नमः, भवे भवे नाथ भवे बहुत बहुत वाय नमः। ओम भगवान आप कहाँ नहीं है, बहुत भवाय च आप, भव भी आप हैं, बहुत राय भी आप ही, बहुत तर भी आप ही हैं, कहाँ आप नहीं है, आप सर्वलोकों में हैं। सद्दो जातम प्रपद्यामि सद्दो जाता है वे नमो नमः, भवे भवे नाथ भव बहुत भवाय च, आप सभी रूपों में भव भव तर रूप में भी आप ही हैं प्रभु, आप अघोर रूप में भी हैं और आप श्रेष्ठ रूप में अत्यंत श्रेष्ठ। सर्व विद्या नाम अधीश्वरम, सारी विद्याओं के अधीश्वर आप हैं। ब्रह्माओ ब्रह्माओ ब्रह्माओ अधिपति, ब्राह्मणों में ब्राह्मणों में ब्राह्मणों के भी अधिपति अधीश्वर यदि कोई है तो हे शिव आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। वो श्रेष्ठता की पराकाष्ठा में भी वही है, निकृष्ट से निकृष्टता की पराकाष्ठा में भी वही है, जो आदि में भी है वही मध्य में भी है तो बीच में भी वही होता है, यही वेदांत का सिद्धांत है। जो पहले और बाद में एक जैसा रहता है बीच में भी वही होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति आम के बगीचे में जाए और साथ वाले को आम के पेड़ की ओर इशारा करके कहता है ये आम है, ये आम है, ये अनार है, ये सेब है, सेब के बगीचे में जाकर अनार के बगीचे में जाकर सेब के बगीचे में जाकर आम के बगीचे में जाकर आम की पेड़ की ओर इशारा करके सेब की पेड़ की ओर इशारा करके अनार की पेड़ की ओर इशारा करके कह रहा है ये अनार है, ये सेब है, ये आम है। और जो साथ में व्यक्ति है वो देखता है कि इस पेड़ में तो कहीं कोई अनार नजर नहीं आता, कोई सेब नजर नहीं आता, कोई आम नजर नहीं आता, ये आम सेब कैसे बता रहा है, ये अनार कैसे बता रहा है, कहा कि मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, इस पेड़ के दिखने से पहले भी वो सेब था, अनार था, आम था, और पेड़ जब दिख रहा है और उस पेड़ से जो निकलने वाला है आगे वो अनार ही निकलने वाला है, सेब ही निकलने वाला है, आम ही निकलने वाला है, बाद में भी उससे वही निकलेगा, पहले भी वही था, तो तो बीच में ये जो दिखाई पड़ रहा है पेड़, ये दिखाई देने वाला पेड़ कहाँ है? बोले ये तो उसी के अंदर था, कहीं बाहर से नहीं आया, वही है। इसी प्रकार इस जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये भी शिव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, नारायण शिव ही है। इसलिए मानो तो कंकर, मानो तो शंकर, नहीं तो सारे कंकर। अर्थात शंकर प्रत्येक कंकर, कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर। जितने भी सृष्टि के कण हैं, कण कण में वो व्याप्त है, ऐसा सनातन शिव है। और ऐसे शिव के पावन नाम को

कृपालु हैं, ये कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखते हैं, जो इनकी शरण में आ जाए, जिसने शिव शिव नाम लेकर इनका आश्रय कर लिया, भरोसा कर लिया, उसे भवसागर से भगवान ने तार दिया, तारा ही नहीं वशिष्ठ जैसे मुनि को ये ख्याति प्रदान कर दी, अगस्त आदि इन देवताओं को, ये इन ऋषियों को ऋषि बना दिया, तो केवल शिव नाम ने, ऐसा शिव नाम हमारे हृदय में बसे और निरंतर हम भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण करें।

आदरणीय स्वामी जी, तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग वैदिक शांति पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्रम से पढ़े जाने वाले 10 वैदिक शांति मंत्रों में हम लोग छठे क्रम का सामवेदीय शांति पाठ का विचार कर रहे हैं।

0: तो देखिए ये जो शांति पाठ है, जैसे कि आपको बताया कि सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद में ये मंगल रूप में पठित है और ब्राह्मण भाग की छांदोग्य उपनिषद में भी ये पठित है। विघ्न निवृत्ति के लिए जैसा कि आपको बताया कि मंगल पाठ किया जाता है, मंगल पाठ में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम यदि वेदाध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हो तब हमारा ये जो पूरा कार्यकरण संघात है वो अनुकूल हो जाए, क्योंकि उपनिषद जो ब्रह्म है, उपनिषद प्रतिपाद्य जो तत्व है ब्रह्म है, उसका ज्ञान अग्रबुद्धि से होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्म दृष्टि, और वो तभी होगी जब हमारा पूरा कार्यकरण संघात वो संयत हो, इसलिए प्रार्थना की जा रही है। तो ये शांति पाठ के अंदर जो कही गई प्रार्थना है उनको समझने के लिए, शांति पाठ का जो हार्द है, उनकी जो गहराई है, वो गहराई तक जाने के लिए जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इसके 7 वाक्य बनते हैं ये शांति पाठ के। 2 वाक्यों के ऊपर कल हम लोगों ने विचार किया था। पहला वाक्य बनाया था, मम अंगानि वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम च सर्वाणि इंद्रियाणि चाप्यायन्तु। इसका अर्थ है कि मुमुक्षु प्रार्थना करते हुए यहां पर कहते हैं कि मेरे जो अंग है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु यानी कि पुष्ट हो, पुष्ट हो यानी कि शरीर से, अन्न जड़ से तो ठीक है पुष्टि अलग है, किंतु यहां पुष्टि का अर्थ है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। मेरे सभी अंग है वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाए, तैयार हो जाए, तद अनुकूल हो जाए। कौन कौन से अंग? तो खुद बताया, वाक, वाणी, और वाणी से कर्मेंद्रिय पंचक ले लेना है। फिर कहा चक्षु श्रोत्रम, चक्षु और श्रोत्रम को उपलक्षण मान करके ज्ञानेन्द्रिय पंचक ले लेना है, और प्राण, प्राण से प्राण पंचक ले लेना है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण। ये जो सब है वो, और सर्वाणि इंद्रियाणि, इससे ये भी ले लीजिए, बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, वो सब ले लीजिए। बाह्य इंद्रिय वो है जो बाहर की ओर देखती है, बाह्य पदार्थों को जो देखती है। ज्ञान इंद्रिय है वो किसको देखती है? बाहर। कर्म इंद्रिय जो कर्म करती है। अंतर इंद्रिय है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण जिसको कहते हैं, अंतः यानी अंदर के करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी आप्यायन्तु यानी कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए, आप अध्ययन करने बैठे और इंद्रिया यदि चंचल है, कहीं अन्यत्र जा रही है, मन अन्यत्र जा रहा है, तो क्या श्रुतार्थ ग्रहण होगा? नहीं। मन 2-5 सेकंड के लिए भी विचलित हो गया, व्यग्र हो गया या अन्यत्र चला गया, और फिर पूछो क्या सुना, तो तुरंत कहेंगे कि अरे पता ही नहीं चला, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वो ध्यान कहां गया था? अन्यत्र चला गया। तो विक्षेप हुआ कि नहीं? फिर वेदार्थ समझ में नहीं आएगा। ग्रंथार्थ का जब तक श्रवण ही नहीं होगा, तब तक जो है फिर विस्मरण की बात तो दूर। इसलिए श्रवण के लिए ध्यान किधर चाहिए? अध्ययन की ओर। और यदि नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, तो ध्यान किधर होना चाहिए? ये जो है ब्रह्म की ओर। इसलिए भावना की गई कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, अन्यत्र न जाए, किंतु ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। ये एक वाक्य हुआ, इसका विचार हम लोग कर चुके इस वाक्य का। अब दूसरा वाक्य ये है, सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। ये दूसरा वाक्य है। इसमें ये कहा गया कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। सर्वम से ग्राह्य है पांच भौतिक संसार, दृश्यमान सारा संसार वो सर्व शब्द से ग्राह्य है। और वो जो ब्रह्म से अतिरिक्त हम जिसको मानते हैं, वो यहां तक कि जो संसार हमने देखा नहीं है, वो भी द्वीप दीपांतर जो भी है, स्थावर जंगम कहने से सब आ गया, वो सारा संसार क्या है? तो कहा औपनिषदम ब्रह्म एव। वो सारा संसार ब्रह्म है। ये कब अनुभव होगा ऐसा? जैसे कि ये जो पूरा कार्यकरण संघात ये उपनिषद के श्रवण में लगे, और मनन निधिध्यासन पूर्वक जब ये श्रवण में लगे, तो ये अनुभव होगा कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। ये जो संसार में जो भी है दिखता है, वो सब क्या? ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होगा। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कहा कि नहीं? ये सारा संसार जो है ना, ईश से आच्छाद्य है, आच्छादन करने योग्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ईशा परमेश्वर के द्वारा ये आच्छादनीय है। अध्यारोप को हटाना, तो सर्वत्र क्या दिखेगा? ब्रह्म दिखेगा। अर्थात कि ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य। जो भी हमको संसार दिख रहा है, वो ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। कटक कुंडल आदि जो भी है, वो सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। घट शराब आदि है, वो मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। तो वो क्या है जिसको हम व्यवहार में लाते हैं? घट शराब आदि है, कटक कुंडल आदि है, उनका व्यवहार करते हैं, वो क्या है? तो कहा वाचारंभणम विकारः। कल बताया था ना, वो केवल वाणी का विषय मात्र है, वाद आलंबन मात्रम। भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं वाचारंभणम का अर्थ करते वाग आलंबन मात्रम। वाणी का विषय मात्र है, वाणी से केवल उनको बोल सकते हैं किंतु उसकी पृथक सत्ता आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। घट शराबादि की सत्ता मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। यदि आप घट को मृतिका से अलग करने जाओगे तो घट नाम की कोई चीज ही हाथ में नहीं आएगी। और वर्तमान में घट जब दिख रहा है, घट में हम पानी भी भर रहे, उस समय भी हम यही निश्चय करके रखे कि ये मृतिका से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी को छांदोग्य में बताया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेये मृतिकेत्येव सत्यम्। वेदांत का सिद्धांत, एक ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो सबका ज्ञान हो जाता है। उद्दालक जी ने श्वेत केतु को पूछा कि तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतेन श्रुतम अमतेन मतम अविज्ञातेन विज्ञातम भवति इति। श्वेत केतु तो सुनकर के दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा विचलित हो गया कि पिताजी ये कैसे हो सकता है। तो पिताजी ने दृष्टांत के द्वारा बताया, अभी जो मैंने उच्चारण किया यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इत्यादि मंत्र का कहा, जैसे एक मृतिका के पिंड से बने हुए जितने भी घट शराबादी है वो सब ये मृतिका है, ऐसा जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। फिर अलग से ये घट है वो मृतिका है कि नहीं, ये शराब वगैरह कुल्हड़ वगैरह ये सब मृतिका है या मृतिका से अतिरिक्त है, उसको अलग से जानने की जरूरत रहती नहीं है। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य की भिन्न सत्ता नहीं है। मृतिका की सत्ता से ही घट शराबादि की सत्ता है, इस तरह से ब्रह्म सत्ता से ही ये सारे संसार की सत्ता है। ब्रह्म नहीं है तो संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये यहां बात बताइए, सर्वम ब्रह्म एव, ये तो ठीक है किंतु औपनिषदम ब्रह्म एव ऐसा कहा, ये जो है वो सब कैसा है? औपनिषदम ब्रह्म, ये बहुत विलक्षण है। ब्रह्म तो ठीक है किंतु औपनिषदम, देखो ये तभी समझ में आएगा जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे। ब्रह्म कैसा है? उपनिषद एक समधिगम्य, शास्त्र के द्वारा ही जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं औपनिषदम ब्रह्म। या आपको कर चरणादि से चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा वो नहीं दिखेगा, किंतु किससे? तो कहते हैं केवल शास्त्र से। ये जो सारे संसार के अंदर परमात्मा व्याप्त है वो आप उसको बाहर अन्य प्रमाण से ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो केवल उपनिषद के द्वारा, उपनिषद के श्रवण से ही ये पता चलेगा। इसलिए ब्रह्म है वो औपनिषदम है, अन्य प्रमाण से आप उनको नहीं जान सकते। इसलिए जो उपनिषद को नहीं मानते, वेद को प्रमाण रूप से नहीं मानते, वो लोग ईश्वर को भी नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर का जो है अस्तित्व केवल शास्त्र के द्वारा ही है। यदि शास्त्र वाक्य नहीं है तो आप ईश्वर का अस्तित्व आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है कि ये सारा संसार है वो परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है, ये बात भी आप शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। आचार्य बादरायण जी ने जब ब्रह्म जिज्ञासा का सूत्रण किया कि जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म की, तो प्रश्न उठा कि ब्रह्म है क्या, ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे है उसको कहते हैं ब्रह्म। और इस अधिकरण में वो तैतरीय श्रुति का विचार किया, यतोवा इमानी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब यही कहा यतः, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, तद् ब्रह्म वो ब्रह्म है और वो विजिज्ञासस्व वो जिज्ञास्य है। तब ये सारा संसार जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये बात भी केवल उपनिषद से ही जानी जा सकती, अन्य किसी प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष से भी नहीं, अनुमान से भी नहीं, केवल उपनिषद के द्वारा। इसलिए कहा शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से ही जान सकते, ईश्वर को ही शास्त्र से ही आप जो है सिद्ध कर सकते, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। ठीक है, ये जो संसार है वो ईश्वर की साबिती है, ब्रह्म की साबिती है, किंतु वो ब्रह्म कैसा है, ये जो संसार को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो केवल उपनिषद से ही पता चलेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए ये जो संसार ऐसा है, इसलिए मानना ही होगा कि ये संसार ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो संसार है वो नाम और रूप से व्याकृत है। भगवान भाष्यकार ने कहा था नाम रूपाभ्याम व्याकृत, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रय मनसापि अचिंत्य, ऐसा जो संसार है उनको ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई बना ही नहीं सकता। आजकल एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, द ग्रैंड डिजाइनिंग, वो कोई इंग्लैंड में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इसीलिए स्वार्थ, स्वार्थ मतलब स्व का अर्थ जानो, मैं क्या। जब तक स्वार्थी नहीं बनोगे, अपने अर्थ को नहीं जानोगे, और इस शब्द का उल्टा अर्थ लेते रहोगे कि वो बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थी का अर्थ दूसरों को धोखा देना नहीं होता, स्वार्थी का अर्थ होता है अपने में ही मस्त रहना, अपने ही अर्थ को जानना, उसको सार्थक कर देना। अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर जीवन के मकसद से और जीवन के सही आनंद से हम वंचित रह जाएंगे। जितने भी साधनाएं हैं जिनको साधना कहते, वो सब बहिर्मुखी हैं, बहिष्प्रज्ञा, और उसकी तुलना में, बहिष्प्रज्ञा की तुलना में कुछ और लोगों ने अंतःप्रज्ञा साधना बनाई कि अंदर डूबना है, अंदर डूबना, बाहर को छोड़ के अंदर डूबना। देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ लो, अंदर डूबना है या बाहर की वृत्तियां। बाहर की वृत्तियों का मतलब है तीर्थ स्थानों पर घूमना, भंडारे करना, उत्सव करना, जन्माष्टमी मनाना, भजन संध्याएं आयोजन करना, कीर्तन करना, उसमें मन लगा हुआ है कि मैं ये कर रहा हूं। मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल बनवाना, दान करना, कंबल बांटना, ये जो कुछ भी आप समझो, ये बाहर मुखी वृत्ति। आंखें बंद करके ध्यान में बैठना, भगवान का स्मरण करना, मस्त रहना, समाधि में जाना, ये करना वो करना, इसको अंतर्मुखी वृत्ति कहते। अंतर्मुखी वृत्ति और बाहरमुखी वृत्ति, ये दो शब्द इसी को ही अच्छा और बुरा कहते हैं। अपने अपने मानने वाले, जो बाहरमुखी हैं वो बाहर वाले को अच्छा कहते हैं और इनको बुरा कहते हैं जो अंतर्मुखी हैं, और जो अंतर्मुखी हैं वो अपने वाले को अच्छा कहते हैं उसको बुरा कहते हैं। अच्छा और बुरा और कुछ नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। इसी को ही धर्म और अधर्म कहते हैं। अब ये शब्द जरा सुनते कि वो अधार्मिक है, ये धार्मिक है, क्योंकि हम इन शब्दों के अभ्यस्त हो चुके हैं सुनने, ये हमें कुछ महत्वपूर्ण लगते हैं। कोई ये कहे ये बाहर मुखी है तो अच्छा नहीं लगेगा, कहे बहुत धार्मिक है तो बड़ा अच्छा लगता। धार्मिक का अर्थ ही बाहर मुखी है, धार्मिक का अर्थ यही तो है ना कि तीर्थ स्थानों पर जा रहा है, भंडारे कर रहा है और वो बनवा रहा है, अस्पताल बनवा रहा है, यही तो धार्मिक है और क्या है। अगर बाहर मुखी कहा तो लगता है कि जैसे मैं बहुत वो हो गई, हमने कहा ये बड़े धार्मिक हैं वो भी खुश हो गए और सारे काम ठीक चल। और जो अंतर्मुखी हैं, अपने आप में मस्त रह रहे हैं, वो अधार्मिक क्या है, क्योंकि वो ना कभी मंदिर में जाते हैं, ना गुरुद्वारे में जा रहे हैं, ना तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, ना भंडारा में जा रहे हैं, ना उनके सामने कोई फोटो है भगवान की, ना कोई कुछ है, वो तो अपनी आंखें बंद करके अंदर डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो अधार्मिक। अब बाहरमुखता, अंतर्मुखता, धार्मिक अधार्मिक, अच्छा या बुरा, जब तक इन दोनों में से कुछ भी बनने की कोशिश करोगे, इसी को ही आम बोलचाल की भाषा में, पौराणिक कथाओं में सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर कहती, बंधे हुए दोनों ही हैं। एक अपने आप को वो बड़े अच्छे समझ रहे हैं और दूसरे अपने आप को, दोनों ही एक दूसरे, देखो जितने अच्छे लोग हैं वो उनको बुरा समझ रहे हैं, जितने बुरे हैं वो अच्छों को बुरा समझ रहे हैं, उनका अपना ग्रुप है, उनकी भी बहुत बड़ी एक ग्रुप है पूरे का पूरा, वो आपस में एक दूसरे को अच्छा मानते हैं और जितने आप अच्छा मानते हो उन्हें वो जान से मार देते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं, वो कहते हैं ये शोषण करता, चाहे आज की भाषा में आप आतंकवाद कहो, माओवादी कहो, वो कहो, कम्युनिस्ट कहो, कुछ भी ऐसी बातें करते हो, हमारा उनसे संबंध नहीं राजनीतिक शब्दावली से, लेकिन वो अपने को अच्छा ही समझते हैं कि पैसे वालों को खत्म करो क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं गरीबों का। जो कोई कहेगा ये कि ये कर्मों का फल है, उनको मारो। क्यों मारो उनको? क्योंकि वो अमीरों की पुष्टि कर रहे हैं, गरीबों को भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए कुछ चारा नहीं। अमीरों को भी बता रहे हैं ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए बहुत अच्छा है, वो भी जस्टिफाइड और वो भी जस्टिफाइड। कभी कोई इस तरह से उठ नहीं पाएगा, विद्रोह नहीं कर पाएगा अमीरी के विरुद्ध, इसलिए पुरोहित वर्ग को पहले मारो, ऐसे सन्यासियों को, संतों को, ये उनका सिद्धांत है अपना, और वो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, जो जैसा सोच रहा है सो ठीक, क्योंकि एक जीवन का ये बिल्कुल सिद्धांत है कि जैसी जिसको देखे दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अच्छा और फिर बुरा क्या है इस बात को जाने दो, जो जैसा देख रहा है, जिसको जैसी दुनिया दिख रही है वो वैसा बोल रहा है, इस बात के लिए उससे उलझना कि ये ठीक नहीं वो नहीं, इस बात को जाने दो, दिखाने दो जो जैसा दिखला रहा है। आप अपने ढंग से देख रहे हो, अपने ढंग से समझा रहे हो, दूसरा अपने ढंग से देख रहा है, अपने ढंग से समझा रहा है। सारे कभी एक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। सांप सामने पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है, उसको कोई सांप देख रहा है, कोई डंडा देख रहा है, कोई भूस इधर देख रहा है, अब कैसे समझा पाओगे आप रोशनी भी कर दो, सबको रस्सी नजर आ जाए, तब भी बीच में दो ऐसे होंगे कि नहीं ये रस्सी नहीं है तो सांप। तो जो मानसिक विकृतियां हैं इनका कोई चारा नहीं है, इसलिए उनमें उलझो नहीं, वहां तक रोको नहीं, आप अपने चिंतन में आगे बढ़ो। तो कुल मिलाकर बात केवल इतनी है, यहां उन्होंने जिस उपनिषद को आपने लिया, क्योंकि उपनिषद दो चार दिन की बात नहीं होती, ये जीवन भर की चर्चा होती, और हमारी परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में एक एक उपनिषद का एक एक ऋषि होता था, उसने सारी उम्र वही किया और आगे अपने शिष्य को वही करवा जाता था, और पूरा जीवन उसी का ही चिंतन, उसी पर ही वो बोलता था, उसी को समझाता था। ऐसा नहीं है कि अभी उसने ये पकड़ लिया, कल को दूसरा, परसों तीसरा, ऐसा नहीं। इस उपनिषद में जिसमें आपने ये बात की, इसमें उन्होंने कहा कि जो असलियत है वो ना अंतः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयता प्रज्ञ। सच्चाई क्या है, अंतर्मुखी वाली या बाहरमुखी वाली? क्योंकि इसमें अंतर्मुखी को स्वप्न कहा, बाहरमुखी को जागृत कहा, और साथ में ये भी कह दिया कि सच्चाई से दोनों ही वंचित रह गए, क्योंकि जागते समय हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, अपने और पराये की भावना हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, और स्वप्न में हमारी वासनाएं हमें सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, और नींद में अज्ञान सच्चाई की ओर नहीं जाने देती, क्योंकि सच्चाई का संबंध ना वासनाओं से है, ना कामनाओं से है, ना अज्ञान से। ये शब्द सच्चाई को छू नहीं सकते। बहुत आसान और मोटे शब्दों में अगर आप समझो तो जिसको तत्व हम कहते हैं या बोलते हैं, अस्तित्व का नाम है। अस्तित्व का मतलब है हवा, पानी, चांद, सितारे। हवा को कोई वासना के कारण नहीं चलती, हवा किसी कामना के कारण नहीं चलती कि अमीरों से कुछ मिलेगा मैं इसलिए इधर चली जाऊं, गरीबों से कुछ नहीं मिलेगा मैं उधर ना जाऊं। हवा की कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अज्ञान नहीं उसमें। चांद में, तारों में, फूलों में, पानी में, झरनों में, पर्वतों में, समुद्र में, नदियों में, इन्हीं को ही अस्तित्व कहते हैं, इन्हीं को ही ब्रह्म कहते हैं। आप ऐसा थोड़ी देर के लिए यही मानो, क्योंकि इन सब में जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए ना द्वैत है ना जातीयता है ना अपने प्राय की कोई भावना, देखने में विरोधी होते हुए भी आग और पानी इकट्ठे रह रहे हैं। देखो कितनी मजे की बात। बादल और हवाएं सब मतलब पूरे का पूरा इसी को अस्तित्व शब्द से एग्जिस्टेंस जीवन अलग, ये इनका कब शुरू हुए थे कोई आदि नहीं, कब तक चलेंगे इनका अंत कोई। इसलिए अगर आप सीधा ही इनसे संबंध जोड़ते हैं तो आप दुनिया की हर खुशी मिल गई आपको। इनसे संबंध जोड़ने का मतलब होता है ये हमारे प्रेरणा स्रोत बने, प्रेरणा इनसे ले। संबंध जोड़ने का अर्थ ये कुछ नहीं है कि इनसे रिश्तेदारियां होनी है हमारी, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेना ये हमारे प्रेरणा के स्रोत, क्योंकि हमारा जीवन भी इन्हीं की वजह से, देखो हवा से जुड़े हुए नहीं हो और तो किससे जुड़े हो। एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन का अगर मतलब नहीं तो कहानी खत्म है क्या? हम क्या इतने अपने आप को सोच रहे, किस ब्रह्म को ढूंढ रहे हो इधर? क्योंकि ब्रह्म न अंतः प्रज्ञा न महिष प्रज्ञा न उभयता प्रज्ञा न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञा, ये सारी बातें अस्तित्व पर। अस्तित्व का मतलब होता है, ये भी एक शब्द है जो लगातार कई दिन सुनते रहो तो समझ में आ जाता, लेकिन जनरल बात मोटे तौर पर मैं आपको जो बतला रहा हूं वो यही है कि जिनकी वजह से जीवन है, जहां जीवन होगा वहां मृत्यु होगी, जहां अस्तित्व होता है उसकी मौत नहीं। देखो मिट्टी कब बनी इसका कोई आदि नहीं है, मिट्टी कब तक रहेगी इसका कोई अंत नहीं, पानी कब बना इसका कोई आदि नहीं, पानी कब तक रहेगा इसका कोई अंत नहीं, पंचभूत कब बने इसका कोई आदि नहीं, पंचभूत कब तक रहेंगे इनका कोई अंत नहीं। लेकिन मेरा और आपका शरीर भी पंचभूतों से बना है, इसका आदि भी है इसका अंत भी। वो जो पहले मैं बात कर रहा था वो अस्तित्व है जो अपनी बात की, ये जीवन, जीवन का प्रारंभ भी है अंत भी। लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से अगर अस्तित्व से हम जुड़ते हैं तो ना हमारा आदि है ना कोई परेशानी। लेकिन अगर जीवन को ही हम सत्य मान बैठते हैं तो फिर तो हमने इन इंद्रियों को ही पकड़ लिया। अगर हम एक पानी के बुद्धे को ही सत्य मान बैठे तो समुद्र से नजर चूक गए। समुद्र का अंत नहीं, समुद्र का आदि नहीं, बुद्धे का अंत भी है आदि भी। लेकिन वो पानी का बुद्धा अगर उसमें चेतना हो तो वो समुद्र की छाती पर नृत्य कर रहा। आप जो हैं, मैं जो हैं, उस परम चेतन की गोद में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कह लो, इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंधा सा नजर आए। कैसा विचित्र बात, स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ और फिर कोई परेशानी। तो जब तक आप इस चिंतन तर्क, ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है भाव तक ले जाने के लिए। ये इन सब की सत्यता को स्थापित करने के लिए नहीं है, सत्यता अस्तित्व की ही है। और क्योंकि प्रत्येक वस्तु घटना कुछ भी देखो वो अस्तित्व का ही विवर्त है, इसलिए वो भी सत्य जैसी लगती है। लेकिन जो सचमुच में सत्य है उससे जुड़े रहें तो ऊपर का मजा लेते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं। सिनेमा घर की स्क्रीन का ध्यान रहे कि वो सफेद ही है, उस पर कोई चित्र नहीं कभी बना। कई फिल्में आई, कई गई, कई जली, लेकिन वो ज्यों का त्यों स्थित तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हम सब पात्र समझ लो अपने आप को, कुछ बात समझने के लिए, कुछ कहने के लिए। हमारे से पहले भी कई आए चले गए, अब हम हैं, अपना अपना रोल करके जाना जरूर है, यहां कोई रुक सकता नहीं। इसको अगर स्वीकार कर लोगे कि जाना है तो नाचते हुए चलोगे, नहीं स्वीकार करोगे तो धक्के खाते हुए चलोगे, क्योंकि आपको आगे पहुंचाने वाले पीछे खड़ी है लाइन एक पूरी। इस वहम में न रहना, ये जिनको आप अपने कहते हैं ना, वो इतना कुछ ही अपना है कि आगे पहुंचा के छोड़े, नहीं तो कोई आगे पहुंचाने वाला म्यूनिसिपल कमेटी वाले आते या कोई और आते। अपने का इतना सा ही मतलब है कि ये पहुंचा आएंगे वहां तक। तो अगर हम सीधा उपनिषद के ऋषि जब एकांत में जंगलों में झीलों के किनारे पर्वतों के सौरम्य घाटियों में बैठकर जब बात करते हैं तो वो अस्तित्व से जुड़े हुए, उनका जो कोई भी वाक्य है उसमें रत्ती भर भी कहीं आपको धूल नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस वातावरण में धूल होती ही नहीं। उन्होंने खरगोशों की, हिरणों की, मोरों की आंखें देखी हैं, उनको कभी वासनाएं नजर नहीं आई, वो आदमियों से मिले ही नहीं, वहां रहते थे। उनके पास अगर खरगोश भी आए हैं, चूहे भी आए हैं, मोर भी आए हैं, हिरण भी आए हैं, कोई कौवे भी आए हैं, तो उनको आज भी उन पक्षियों की आंखों को कभी देखो, अगर थोड़ा बहुत उनमें कुछ भय है तो हमें देख के ही होता है, बाकी कोई बात नहीं है। अब यहां उनका भी ग्रुप हो पूरा पक्षियों का, भाग मिले उन्हें, यहां सुबह सुबह इधर समुद्र के किनारे पर कबूतर और कौवे, उनको लोग कुछ खाने को देते हैं और झुंड के झुंड आते हैं, क्योंकि वहां उनकी मेजॉरिटी है, वो आदमी से डरते नहीं, वो आपस में देखो उनको वहां नृत्य करते हुए आप हैरान रह जाओ। और जो विरोधी एक किस्म के, कभी आप सुन नहीं सकते, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स डॉग्स का मतलब होता है दिन रात की लड़ाई, कुत्ते और बिल्ली आपस में ऐसे, यहां कुत्ते के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, बाहर पूजा खाने को सब कुछ मिल रहा है, कुत्ते भी लेटे हुए हैं, बिल्ली भी वहीं बैठी हुई है, कौवा भी वहां बैठा हुआ, तो कुछ समुद्र की वजह भी हो सकती है, वरुण देवता की भी कृपा हो सकती है कि यहां उनमें वो वैर भाव की बात उतनी ना। तो जो लोग रहे ही बाहर ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, उन्होंने जो ये निरूपण किया हुआ है, इनमें वासनाएं नहीं। जिन्होंने शहरों में बैठ के कविताएं लिखी हैं, जिन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते कि वो मीरा से भाव को छू सकें कभी। कितना भी वो अपने आप को बढ़िया से बढ़िया बना लें, गीतकार बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये कथा, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि उस अनादि और अनंत की है, इस चर्चा का कोई अंत नहीं, जब तक चाहे करते रहें कभी भी इसका अंत नहीं होगा। चांद निकल के छुप गया, क्षमा भी जल के बुझ गई, हुस्ने अजल की दास्तां किस्सा है ना तमाम। हुस्ने अजल का मतलब है एटर्नल ब्यूटी, कभी भी पतन ना हो जिसका, ऐसा सौंदर्य उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब फिर जब कभी समय मिलेगा फिर आगे बात करेंगे, आज इसी के साथ विश्राम।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

अस्माकं सन्निधिस्सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासि वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: सप्तमकांड प्रारंभ।
3: ओम प्रजननंजोतिरग्निर्देवतानांजोतिर्विराट्छन्दसांजोतिर्विराट्वाचोऽग्नौ संतिष्ठते विराजमुखे।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kaliya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum ek aur Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani sunenge. Inka naam Kaliyar hai. शिव के मंदिर में दीपक जलाने की सेवा को भक्तिभाव से करने वाले कलिया नायनार का जन्म तिरुवट्रियूर में कोल्हू चलाकर तेल निकालने वाले तेलियों के एक परिवार में हुआ था। यहाँ शिव का नाम त्यागेश्वर है, वे त्याग की मूर्ति माने जाते हैं। यह वही स्थल है जहाँ वचन भंग करने के कारण नवी शती में सुंदरर की नेत्र ज्योति छिन गई थी। इसी स्थल पर पिछली शताब्दी में तमिलनाडु के चिंतक संत रामलिंग स्वामी ने 12 वर्ष तक निरंतर साधना की थी। कुलिया नायनार के पास अपार धन संपदा थी, व्यापार में आय भी प्रचुर मात्रा में होती थी। इन्होंने शिव मंदिर के अंदर और बाहर दीप प्रज्वलित करने की सेवा का प्रण ले लिया। निष्ठापूर्वक उनकी सेवा पर्याप्त समय तक चलती रही। कालांतर में इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने लगा, व्यापार कम हो गया। इस पर कलिया नायनार अन्य व्यापारियों से क्रय ले करके तेल का विक्रय करने लगे। उससे मिलने वाली धनराशि का तेल खरीद कर दीप सेवा का कार्य चलाता रहा। परंतु शिव तो अपने भक्त के महत्व को सारे संसार को दिखाना चाहते थे। जब तेल विक्रय का काम भी न चला तो कोल्हू चलाने के काम को धन अर्जित करने के लिए अपनाया। कोल्हू में तेल निकालना, बीजों से निकले तेल की जाँच करना, बैलों की सेवा करना उनका काम था। परंतु मजदूर अधिक थे, कोल्हू कम, अतः धीरे धीरे आय का यह मार्ग भी बंद हो गया। इतने पर भी जो कुछ मिला उससे वे शिव मंदिर के दीपक जलाने की अपनी सेवा करते रहे। जब आय के सभी साधन बंद हो गए तो उन्होंने अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी को बेचने का प्रयास किया, पर उसमें असफल रहे। सेवा में विघ्न न पड़ जाए यह विचार कर वे दीपकों में वर्तिका डालकर अपने रक्त को तेल के स्थान पर डालने का विचार कर अपना गला काटने को उद्युत हो गए। परंतु त्रिनेत्र त्रिभुवशारी प्रभु स्वयं उसी क्षण प्रकट हुए और अनंत कृपा करते हुए भक्त का हाथ रोक लिया। जब वृषभ आरूढ़ शिव समक्ष आए तो कलियर का घाव स्वतः ही ठीक हो गया, हाथ प्रभु को प्रणाम करने की मुद्रा में बंद गए। शिव ने आस्था के दृढ़ अपने भक्त को शिवलोक में स्थान प्रदान किया। त्रिवट्रियूर के वर्णन में चकिलर ने वहां के मणि मंडपों और सुंदर रंगमंच का वर्णन किया है, जहां शिव के स्तुति गीत गाए जाते थे और नर्तकियों अनेक उनके अनुरूप नृत्य करती थी। संगीत मंडप और प्रवचन मंडप भी मंदिर में थे। इसकी जानकारी पुराणकार ने शिलालेखों की से ग्रहण की है। कलियर नायनार असंख्य अगणित दीप प्रतिदिन जलाते थे और इसे वे दैनिक सेवा के रूप में करते थे। साधारण सेवा में परीक्षा की घड़ी संभवत न आती, पर जब यही दीप सेवा जीवन का लक्ष्य बन गया तो कलियर ने जीवन में भी अड़चन और परीक्षा का समय आया। तमिल प्रदेश में किसी भी कर्म को उच्च या निम्न नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण है कि एक धनाढ्य व्यापारी द्वारा कठिन समय आने पर दूसरों के लिए कार्य करना या फिर कोल्हू चलाने जैसी साधारण मजदूरी का कार्य करना भी ठीक ही था। ऐसा कोई उल्लेख या संकेत नहीं मिलता कि किसी भी व्यक्ति ने उनका उपहास किया हो। चकिलर ने अति प्राचीन काल की इस कथा के माध्यम से अनन्य निष्ठा और अपने प्रण की रक्षा के लिए प्राण तक उत्सर्ग करने की तत्परता का वर्णन किया है। इसीलिए कलिया नायनार एक उच्च कोटि के संत या नायनमार है। Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Arre re re re. Chalo. तेरा कल्याण हो जाए, जा अब आगे उद्दंडता नहीं करना। बोले नहीं करेंगे महाराज, बच गए। ये तो नारद जी की कृपा से बच गए। भगवान शिव को कितना कष्ट हुआ होगा उस पर्वत को दबाए रखने में। शंकराचार्य जी उधर भी संकेत कर रहे हैं,
3: वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिना पस्मारसम्मर्दनम् भूभृत् पर्यटनम्।
2: अब आप पहाड़ों की चोटियों में नंगे पांव घूमते रहते हो, कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़, और बर्फीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, कटीले पहाड़ में भी चलना पड़ता है, पत्थरों में भी चलना पड़ता है। भूभृत, भू माने पृथ्वी, भूभृत माने पर्वत। भूभृत पर्यटनम नमत सुर सुरशिरा कोटीर संघर्षणम। और हमने देखा है स्वर्ग के देवता लोग भी, बड़े बड़े देवता लोग भी बढ़िया बढ़िया रत्न से जटित मुकुट पहनकर आते हैं और आपके चरण में सिर रगड़ते हैं, लेकिन वो लोग गलती क्या करते, मुकुट उतार के रखकर खाली सिर से आपके चरण में सिर रखकर सिर रगड़ते, तब तो आपको चरण में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने मुकुट के सहित रगड़ते हैं, उनके हृदय में जरा भी दया नहीं है कि इस मुकुट के कारण रगड़ने से उनके चरण में कितना कष्ट होगा। उनके हृदय में जरा भी दया नहीं होती।
3: वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिना,
2: और आप मना भी नहीं कर सकते हो, आप मना भी नहीं कर सकते। हम तो नेपाल में रहते हैं, प्राय करके ठंडियों में वहीं रहते हैं। अब काठमांडू में माइनस में जाता है ठंडी जनवरी में, दिसंबर जनवरी वो ठंडा तो होता ही है जनवरी में, तो भक्त लोग आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है, कोई अति श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, कहते महाराज हम आपके चरण को धो के पान करेंगे और चरण की पूजा करेंगे। बोले चरण धोएंगे फिर उसकी पूजा करेंगे। अब ठंडी में चरण खोलकर दे तो न दे तो उनकी श्रद्धा, और दे तो अपने लिए पांव ठंडी से मरना पड़ेगा, क्या करे बोलो, नहीं भी नहीं कर सकते। हां करते हैं तो मुसीबत अपनी ही है, अब मांगते हैं तो देना ही पड़ता है, चरण दो पानी डालते हैं रगड़ते हैं, तब तक तो पांव इतना ठंडा हो जाता है, हैं? फिर फटाफट, अरे जल्दी करो कहना पड़ता है, तो फटाफट फिर तबलिया से पूछेंगे, मोजा लगा देंगे, तब तक तो ठंडा हो चुका होता है भाई। इसी तरह भगवान शिव, हम जीव का तो यह हाल है तो भगवान शिव का क्या हाल होगा। स्वर्ग से देवता लोग रोज प्रणाम करने के लिए आते हैं, कहते हैं महाराज कैलाश में खड़े होकर, महाराज आप चरण दीजिए, हम प्रणाम करेंगे आपके चरण में ही प्रणाम करेंगे। हमारे एक भक्त ने कहा, किसी ने कहा कि संतों के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करो, संतों को चरण स्पर्श न करो। बोले क्यों? बोले हम जीव हैं, अशुद्ध रहते हैं, बहुत पापों से भरा हुआ है हमारा जीवन, तो यदि हम संतों के चरण का स्पर्श करेंगे तो फिर पावर हमारा पाप चरण से महात्मा में चला जाएगा। है? क्या जाएगा? हमारा पाप हमारे स्पर्श करते ही हैं कहां जाएगा, महात्मा में चला जाएगा। इसलिए भक्तों का पाप महात्मा में संक्रमण न करे, इसके लिए चरण स्पर्श न करो, अच्छी बात है। बोले दूसरे महात्मा ने यह कहा, क्या कहा, कि कोई चरण स्पर्श करेगा तो संतों का पुण्य भक्तों में चला जाएगा, ये भी तो गड़बड़ है कि नहीं बोलो। संत सुबह 4 बजे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, आत्मचिंतन करता है ने? और उसके द्वारा प्राप्त जो पुण्य है, एक भक्त 8 बजे तक सो गया, 9 बजे नहा धोकर आया, छू लिया और सब लेके चला गया है, गड़बड़ हो गया कि नहीं बोलो। संतों की सारा पुण्य लेके गया, इसीलिए चरण छूना नहीं देना चाहिए या चरण नहीं छूना चाहिए। हे भगवान, ऐसे ऐसे व्याख्या करते हैं। हम कहते हैं कि तुम इतने कमजोर संत हो, तुम इतनी कमजोर संत क्यों हो कि भक्त तुम्हारे चरण छू ले और भक्त का पूरा पाप तुम्हारे में आ जाए, तुम इतनी कमजोर संत हो है? कमजोर संत इसकी व्याख्या करेगा वो। और तुम संत हो तो कंजूस हो, तुमको पुण्य किस लिए चाहिए बोलो? तुमने मां छोड़ी, बाप छोड़े, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, पुण्य किस लिए चाहिए तुम्हें बोलो? और महात्मा होने के बाद भी मेरा पुण्य मुझे चाहिए, भक्तों को नहीं देंगे, और भक्त से दक्षिणा लेंगे और उनको पुण्य नहीं देंगे, कंजूस कंजूस कहीं का है? भक्त दक्षिणा देगा तो लेगा कि नहीं बोलो? दक्षिणा लेने है और पुण्य नहीं देना है उसको, ये तो बदमाशी है, सरासर बदमाशी है। तुम्हें पुण्य की क्या जरूरत है? तुम तो ज्ञान मार्ग में चले हो, ज्ञान मार्ग में पुण्य की आवश्यकता नहीं है। तुमको मर के फिर स्वर्ग जाना है क्या? जो पुण्य चाहिए बोलो। चित्त शुद्धि तो तुमने जो भजन की है उससे चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्धि के बाद जो पुण्य है वो भक्तों को जाता है तो जाए ना, तो बेचारा वो दक्षिणा तो दे रहा है, नहीं तो क्यों आएगा तुम्हारे पास, क्यों प्रणाम करेगा, क्यों दर्शन करेगा बोलो? पुण्य जाएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु, पाप आएगा करके डरने वाला भी कमजोर साधु। तुम ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाओ और पुण्य और पाप का क्या हिसाब करते हो तुम भाई? किसी को चरण छू करके भी मत कहो, किसी को चरण न छू करके भी निषेध न करो, तुम राग द्वेष से रहित हो जाओ भैया, तुम अपने स्वरूप में अवस्थित रहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे काम में न आने वाला पुण्य शास्त्र ने कहा कि नहीं? पुण्य भी मोक्ष के लिए प्रतिबंधक है। यदा पश्य पश्यति रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परम साम्यम उपेति। विद्वान तो पुण्य और पाप दोनों से असंग होकर परम निरंजन साम्य ब्रह्म में स्थित होता है। तुम पुण्य को इकट्ठा करके रखो, जब तुमको ब्राह्मी निष्ठा आ जाए तो वो पुण्य तो ऐसे ही बेकार चले जाएगा। अब बेकार जाने के जगह भक्तों को, दो चार भक्तों को मिलता है तो मिलने दो ना भाई, क्या हर जाए? कल तुम फिर भजन कर लो, आज का पुण्य कोई एक भक्त लेके जाता है, जाने दो, कल फिर भजन कर लो, कल का भक्त पुण्य फिर दूसरा भक्त ले जाता, ले जाने दो, फिर भजन करो। पुण्य ले जाते हैं भक्त, उससे क्या तुमको कमी पड़ेगी पुण्य की? क्या एक दिन खाली भजन करना है तुमने? जीवन भर भजन करना है, सबको छोड़ दिया है, करते जाओ, पुण्य का खजाना बनाओ, ले जाते हैं भक्त ले जाए, चरण स्पर्श करके चरण तुम्हारा पुण्य ले जाते हैं तो ले जाने दो भाई, मत रोको। और तुम्हारे पास पुण्य हो, फिर भक्तों का पाप आ जाएगा, ये क्यों डरते हो भाई? हैं? अग्नि ये डरती है कि पूस के महीने में, जनवरी के महीने में ठंडी आ जाएगा। अग्नि डरेगी? बोलो, अग्नि डरेगी जनवरी के महीने में ठंडी आ जाएगा? अरे भाई, जनवरी के महीने में ठंडी आए तो आवे, अग्नि को क्या फर्क पड़ने वाला है? शंकराचार्य जी अपने भाव को यहां ये व्यक्त करते हैं।
3: वक्षस्ताड़नमंतकस्य कठिना अपस्मारा सम्मर्दनम भूभृत पर्यटनम नमत सुरऋषिरा कोटीर संघर्षणम। सुर शिर कोटीर,
2: देवताओं ने जो मुकुट पहन रखा है मणियों का, उन मुकुट के सहित आपके चरण में जब प्रणाम करते हैं तो वो मुकुट से आपके चरण में घर्षण होता है, तो कितना चोट लगता होगा आपको। तो फिर क्या करें महाराज?
3: कर्मेदम, आपका ये जो कर्म है बड़ा कठिन कर्म है। कर्मेदम मृदुलस्य तावक पदद्वंदस्य,
2: और आपके जो चरण हैं दो चरण फिर इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि पार्वती के हृदय में रहते हैं, और यदि आपके चरण कठोर होते फिर पार्वती के हृदय में कैसे रहते? बोलो, इसका मतलब ये पक्की है कि आपके चरण बहुत कोमल है, है? ऐसा नहीं कि एक काम करते करते आपका पांव भी कठोर हो गया हो। कठोर होता तो पार्वती अपने हृदय में रखती ही नहीं, निकाल के फेंक देती। बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए तो अपने हृदय में रखती है। तो मुझे चिंता है महाराज, आपको कितना कष्ट होगा। बोले, क्या चाहते हो तुम? बोलो।
3: मच्चे तो मणिपादुका विहरणम,
2: मैंने एक बढ़िया जूता तैयार करके रखा है, बढ़िया जूता तैयार करके रखा है, आपके चरण के नाप का ही है। हा,
3: मच्चे तो मणिपादुका,
2: मेरा चित्त रूपी रत्नों का जो पादुका है, चरण का, चरण पादुका, मेरा मन रूपी आपके पादुका है, है? मणिपादुका, मन रूपी चित्त रूपी मणिपादुका है मेरे पास। उस पादुका को आप धारण करिए, अपने चरण में रखिए भाई।
3: विहरणम संभो सदांगी क्रू,
2: अरे तू कुछ दिन तुम अपने चित्त रूपी चरण मुझे दे देगा, फिर कुछ दिन के बाद तुम मांग के ले जाएगा तो? बोले, नहीं नहीं महाराज, एक बार आप पहन लो, हम कभी भी वापस लेने वाले नहीं है। आपको दे दिया सो दे दिया बस। और विहरणम करो, मेरे चित्त रूपी पादुका को आप अपने चरण में धारण करके, चाहे यमराज को लात मारो, चाहे अपस्मार को दबाओ, चाहे रावण के पर्वत दबाओ, चाहे पहाड़ों की चोटी में, चाहे जंगलों में, कंदराओं में, जहां घूमना हो घूमो, आपके चरण सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और मेरा मन चित्त रूपी पादुका घिसने वाला भी नहीं है। हाँ, इतना मणि है ना, हीरा बहुत कठिन होता है, लेकिन यह है कि

बीवी का क्या होगा, ये सोचने लग जाओगे तो फिर तुम संसार के लिए नरम हो गए, तुम्हारा हृदय फिर भगवान के लिए कठोर हो जाएगा। तो भगवान के लिए नरम हो, संसार के लिए कठोर, यानी जूते का नियम क्या होना चाहिए, बाहर से कठोर हो अंदर से नरम हो। बस जूता यदि अंदर से नरम होगा तो पांव में घर्षण नहीं होगा, चुभेगा नहीं, पांव को काटेगा नहीं, और बाहर से कठोर होगा तो घिसेगा नहीं। हाँ, ये शंकराचार्य जी ने, मैंने ऐसी जूता तैयार किया है, आपके चरण के लिए बहुत नरम है, संसार के लिए कठोर है। तो आप महाराज जूता पहन लीजिए। और आगे क्या कहते हैं, बक्षस्ताड़न संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्बते दृष्ट्वा मुक्ति वधुस्तनोति निवृता श्लेषं भवानी पते यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम तस्येह किं दुर्लभम। जिसका चित्त आपके चरण कमल की पादुका बन गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज सुलभ हो जाएगा। वक्षस्ताड़न संकय विचलितो वैवस्वतो, उस व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। किस व्यक्ति को देखकर, जिसका चित्त रूपी पादुका भगवान शिव के चरण में फिट हो गया, जिसके चित्त रूपी हृदय रूपी पादुका जूता भगवान शिव के चरणों में फिट हो गया है, ऐसे व्यक्ति को देखकर यमराज भी डरता है। क्यों डरता है? अरे रे रे, ये तो भगवान का भक्त है, और यदि मैंने कोई खुदा खास्ता इसके छेड़खानी की तो एक लात भगवान मारेंगे। मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता का मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है, है? मार्कंडेय ऋषि के समय में तो बिना जूता के लात से मारा था, अब तो इन्होंने जूता भी पहन लिया है। कौन से जूता? इस व्यक्ति के चित्त को ही भगवान ने जूता बना लिया है, अब तो जूता पहनकर लात मारेंगे। बोलो, तो यमराज की तो सांस उड़ जाएगी अपने आप। इसलिए वक्षस्ताड़न संकया विचलिता, शिवजी मारेंगे लात करके, पहले से ही वो दूर भाग जाएगा। वक्षस्ताड़न संकया विचलितो कौन? वैवस्वता, सूर्य का पुत्र। यमराज सूर्य का पुत्र है वो, विवस्वान सूर्य, तस्य अपत्यम वैवस्वता, सूर्य का पुत्र यमराज। वैवस्वतो और निर्जरा, निर्जरा माने कभी बूढ़ा नहीं होने वाले, कभी बूढ़े न होने वाले निर्जरा कौन? देवता। देवता कभी बूढ़े नहीं होते वो, हाँ। वो क्या करते हैं? कोटि रोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते, ऐसे भगवान के परम भक्तों को चुनने

अपने चित्त रूपी पादुका भगवान को अर्पण किया, भगवान के चरण में लगा दिए है, और जिसके चित्त रूपी पादुका को भगवान ने अपने जूता बना लिया है, ऐसे भक्तों को तो देवता लोग भी अपने मुकुट के चमकते हुए मणियों से आरती उतारते हैं। कौन? देवता लोग किसके आरती उतारते हैं? भगवान के भक्तों की। आहा, क्या बढ़िया भक्त है। देखो, हमको तो भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ है, और ये इतना महान व्यक्ति है कि जिसके चरण, जिसके हृदय को ही भगवान ने अपने चरण में धारण कर लिए, जूते के रूप में धारण कर लिए, क्या धन्य हो गया ये जीवन। देवता लोग उस ज्ञानी पुरुष के भी भक्तों के अपने मुकुटों से, मुकुट में लगे हुए रत्नों से उन भक्तों की आरती उतारते हैं। निर्जरा कोटि रोज्जल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्ति बधूस्तनोति। इन सबको देखकर, किसको देखकर? उस व्यक्ति को देखकर यमराज डरता रहता है, उन व्यक्तियों को देखकर देवता लोग भी अपने श्री मुकुट के रत्नों से आरती उतारते रहते हैं। ऐसे परम भक्तों को देखकर दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निवृता शेषम भवानी पते। हे भवानी पति, पार्वती पते, हे शिवा, मुक्ति बधु, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री भी ऐसे भक्तों को देखकर बरबस ऐसे भक्तों से आलिंगन करने के लिए उद्भूत, अपने आप ही प्रवृत्त होती है। दृष्ट्वा मुक्ति बधु स्तनो होती निवृत अश्लेषण, अंकमाल करने के लिए आती है अपने आप ही। उस भक्त को मुक्ति खोजना नहीं पड़ता है, मुक्ति के लिए फिर और कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। किस भक्त को? जिसने अपने चित्त रूपी जूते को भगवान शिव के चरण में फिट कर दिया है, ऐसे को देखकर मुक्ति बधु अपने आप ही उसको वरण करने के लिए दौड़े दौड़े आती है। जंगल में रहे, चाहे बंबई में रहे, चाहे हरिद्वार रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे कलकत्ते रहे, चाहे यहां रहे, चाहे इलाहाबाद रहे, आबाद रहे, आजाद रहे, है? मुक्ति बधु पीछे पीछे दौड़ती है भाई उसके लिए। तो वो तो जीते जी वरण कर लेती है मुक्ति वधु, मरने की बात की तो बात छोड़ दो, जीते जी वरण करती है। भक्षस्ताड़न संकया विचलित हो, क्योंकि वो भी समझती है ये भगवान का भक्त है, इसलिए कभी मरेगा नहीं, तो कभी हमको पति वियोग होने ही नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे शादी करने मिल जाए तो भक्ति मुक्ति वधु खुश हो जाएगी, है? होगी कि नहीं बोलो ना। भक्षस्ताड़न मंतकस्य विचलित संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटि रोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीरा जनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्ति बधुस्तनोति निवृता श्लेषम भवानी पते। ये यच्चेतस्तव पाद पद्म भजनम, जिसका चित्त आपके चरणों के आश्रय ले लिया है, पाद पद्म भजनम, भजनम माने भज सेवा, जिसका चित्त परमात्मा के चरण पादुका बनकर सेवा कर रही हो, तस्सेव किम दुर्लभम, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में दुर्लभ कुछ भी नहीं, क्योंकि मोक्ष वधु तो उसके सहचरी अपने आप आलिंगन कर रही है। तो मोक्ष वधु उसको आलिंगन कर रही है, तो संसार का भोग
की कमी होगी, उसको ऐश्वर्य की कमी होगी। शिव जिसके हृदय में अपने चरण रखे हुए हैं उसके लिए क्या किस चीज की कमी होगी, सर्वस्व उसको प्राप्त होगा, भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। किम दुर्लभ, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई कमी है, तुम्हारी कमजोरी से तुम गरीब और दरिद्र दीन दुखी हो रहे हो। तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो चित्त को तुम भगवान शिव के चरण पादुका नहीं बना पा रहे हो बस। हां देख लो, शिवानंद लहरी के कुछ श्लोक बहुत रत्न हैं। एक श्लोक हमने पहले भी कहा था, बड़े प्रिय श्लोक है। दूसरा श्लोक ये आ रहा है, ये श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है, ठीक से समझना बहुत जरूरी है इस श्लोक का। और यदि इस श्लोक का भाव यदि किसी ने समझ लिया, उसका जीवन परम आनंद और मंगलमय हो जाएगा, फिर उसके लिए संसार में कोई विषाद की घड़ी उपस्थित होगा ही नहीं। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्माचरितम मया च भवतो प्रीत्यै भवेत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितम् निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। इस श्लोक की व्याख्या कल ही करेंगे भाई, क्योंकि अब व्याख्या जाएगा आधा घंटा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।

0: मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Bhagavan ki kripa se hum log मुंबा पुरिस्थ प्रेमपुरी आश्रम में सुनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले उच्चारण 17वां श्लोक। व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो आराम्य प्रिखत लघु दृष्ट शिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि।

इसके पूर्व भगवान जो निर्गुण निर्विशेष हैं, जैसा उपनिषद में हम लोग सुनते आए हैं, देवाव ब्रह्मणे रूपे, जो परमात्मा का दो रूप है, मूर्तंच अमूर्तंच। अमूर्त तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जो कि मन वाणी का विषय नहीं है, लक्षणा के द्वारा अतत व्यावृत्या जिसको निषेध मुख कहते हैं उसके द्वारा समझा समझाया जाता है, और दूसरा है विधि मुख का विषय। परंतु जो मूर्त रूप है उसके भी दो हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। तो सगुण साकार स्वरूप का यहां प्रतिपादन करने जा रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी दिव्य लीलाओं को किया ताकि भक्तों के मन वाणी का विषय बन सके। 17 श्लोक के पहले बताया था कि अज्ञान का अध्यारोप, मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव और मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, और दोनों के अधिष्ठान को ब्रह्म कहते हैं या अधिष्ठान तत्व भी कहते हैं। यह माया और अंतःकरण दो उपाधियां हैं, परंतु अन्य आचार्य के मत से माया में विद्या में थोड़ा फर्क किया है। शुद्ध सत्व प्रधान का नाम है माया, मलिन सत्व प्रधान का नाम अविद्या है। तो मायोपाधिक ईश्वर, अविद्योपाधिक जीव, ऐसी भी परिभाषा है। जो अविद्योपाधिक है वह तो जीव है और मायोपाधिक ईश्वर है। परंतु जो भामती प्रस्थान के आचार्य वाचस्पति मिश्र है, इनका बहुत ही संक्षेप में और तर्क संगत अनुभूति पूर्व लक्षण है, सीधा मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है, जो अनुभव में भी आता है। अंतःकरण छोटा होने से हमारी उपाधि छोटी है, सामर्थ्य छोटा है। जैसे कि गंगा जी में नावें चल सकती है, मनुष्य तैर सकता है, परंतु एक घड़े जल में नाव नहीं चल सकती, न कोई तैर सकता है। पर जलत्वेन दोनों जल एक ही है, जल में अंतर नहीं, बस उपाधि छोटी है। घट उपाधि छोटी है, नदी की उपाधि बड़ी है। ऐसे ईश्वर की माया उपाधि बड़ी है, जीव का अंतःकरण उपाधि छोटा है, इसलिए इसमें थोड़ा सामर्थ्य है। पर यदि घड़े के जल को नदी में छोड़ दें, तो फिर आप यही जल है इस प्रकार से अलग करके नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से जीव का विलय, जो उपाधियां हैं, उपाधियों कारण से जीव संज्ञा हुई, उपाधियों के रहने से ही सारी समस्या है, उपाधियों के विलय से ही निरुपाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी निर्गुण निर्विशेष में जब माया का अध्यारोप किया तो वह ईश्वर कहलाया, और ईश्वर बनने के बाद जगत का वह पालन करता है, संहार करता है, विस्तार करता है। तो पहले तो माया का आरोप किया, बाद में कामना के नाश के लीला को बतलाया, और 16वें श्लोक में तांडव नृत्य का वर्णन किया था कि भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। तांडव शब्द की निष्पत्ति तदि आघाते धातु से होती है। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने मन के साथ, शरीर के साथ, और भी आगे बढ़ो तो पुत्र, मित्र, पति, पत्नी, मकान, दुकान सबसे चिपका हुआ है। इतना चिपक गया है कि इनसे अलग करके नहीं समझता है।
तो भगवान जब आघात करते हैं ना, तो जरा इनसे ये जो चिपका हुआ है अलगाव होता है। हालांकि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही जीव का भी है, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, परंतु हम लोगों ने जो देहाध्यास कर लिया, इस प्रकार से अपने मकान से चिपक जाते हैं कि एक क्षण के लिए भी अलग होना मुश्किल पड़ता है। यदि मान लो यहां से हरिद्वार गए तो हरिद्वार मोबाइल साथ में होता है ना आजकल, वहां तो गए कि आराम से शांति से भजन करेंगे, परंतु जैसे ही गंगा जी में गोता लगाकर और बैठे माला घुमाने, तुरंत फोन आ गया, जल्दी आ जाओ, बड़ा जो है आप बिना काम बिगड़ रहा है। पत्नी ने पूछा कि आपने गंगा स्नान कर लिया? आपने कहा बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। अब पत्नी बोली क्या करे? बोली भगवान का जप कर रहा। बोली वो जप तो यहां भी हो जाएगा, गंगा स्नान हो गया, सीधे आ जाओ। बताओ, आराम से बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, मन भी लगा था, परंतु अब इधर से फोन गया तो आना ही पड़ेगा, और मोबाइल नहीं होता तो आराम से 10-20 दिन रहते शांति से। ये जो अत्याधुनिक आविष्कार हैं, ये जितना सुविधाजनक है उतना दुविधाजनक भी है, उतना ही संशय और समस्या खड़ा करते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ा इस पर विचार किया कि जो अत्याधुनिक विज्ञान है इसके आविष्कार करने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। योग दर्शन में बड़ा मूल्यांकन किया महर्षि पतंजलि जी के जमाने में, मतलब लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय सभी ऋषियों को आमंत्रित किया और विचार किया कि भाई अत्याधुनिक इस विज्ञान के आविष्कार से समाज के समक्ष रखने से क्या नुकसान होगा। तो बताया कि समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया, योग दर्शन में ये बात लिखी हुई है, समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धया। समाधि का तो अंतराय है, अंतराय बोलते विघ्न को, बाधा, और अभ्युत्थान में सिद्धि है। व्यवहारिक जगत के लिए ये तो अच्छी बात है, जैसे आपको हरिद्वार जाने में बहुत समय लगता है, विमान में बैठे 2 घंटा में पहुंच गए आराम से, या जो है मोबाइल से तत्काल संपर्क हो गया, बात हो गया, यहां तक तो ठीक है, परंतु आपको व्यवहारिक जगत से हट करके भगवान में मन लगाना हो, समाधि में बैठना हो, भजन करना हो, उस समय ही बाधक बन जाता है। इसलिए कह दिया समाधो अंतराय, ये भजन ध्यान समाधि सत्संग का बड़ा भारी अंतराय है, विघ्न है, और शांति का भी अंतराय है। व्यवहारिक जगत में चाहे कितना भी भौतिक संसाधन सम लाभ उठा लें, परंतु पारमार्थिक जो सत्ता है, आध्यात्मिक जगत है, उसका किसी भी अंश में इसका उपयोग नहीं है। प्राचीन काल में लोग तीर्थाटन करते थे, तीर्थाटन से बड़ी शांति महसूस होती थी, पूरा उनका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता था, जीवन बदल जाता था। पर आजकल हजार बार बद्रीनाथ दर्शन कर क्या कोई नहीं बदलाव, कुछ नहीं, जस का तस रहते, क्योंकि जब आप यहां से पैदल चल के जाएंगे, पहुंचने में जब महीना 2 महीना लगेगा, तो एक तो शारीरिक तपस्या होती है, ऐन्द्रिक तपस्या होती है, तपस्या से कलमश क्षीण होता है, जो जन्मांतर के पाप है वे नष्ट होते हैं। जैसे कोई मूर्ति धातु की बनी हो, सोने चांदी की, वह दूषित हो जाती है तो अग्नि में तपाकर शुद्ध करते हैं। घृत भी जब उसमें कोई दुर्गंधी आता है तो लोग अग्नि में

0: तपाग शुद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही तपसा किल्बिषम हंति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं तपसा किल्बिषम हंति, तपस्या से जन्मांतरीय और ऐहिक, चाहे कुरु जन्म का पाप हो या इस जन्म का किल्बिष हो, वे नष्ट होते हैं। जब आप यहां से पैदल चलेंगे तो आपको हर तरह की समस्या का मतलब की समस्या से जूझना पड़ेगा, यहां की तरह व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो अपने आप भगवान का सुमिरन होगा। आजकल के महीने में जो गंगा स्नान करते हैं प्रयागराज या हरिद्वार, स्वभाव से भगवान याद आते हैं, गर्मी में एक बार भी नहीं आते हैं, पर जब डुबकी लगाता है ना तो नास्तिक से नास्तिक जो भी राम राम श्याम श्याम चिल्लाएगा, शिव शिव पुकारता है, महादेव, जब ठंडी लगती है तो पीड़ा होती है तो अपने आप जोर से सब चिल्लाते हैं। प्रयागराज जब जाना माघ महीने में तो सब जोर से लेते, उससे जो तपस्या से वो पाप जब भगते हैं ना। तो देखो जब हम पैदल जाएंगे तो पग पग में भगवान के नाम का सुमिरन होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और यदि हम विमान से 2 घंटे पहुंच जाए बद्रीनाथ, तो फिर न भगवान का सुमिरन होता है, न वैराग्य होता है, न विवेक जगता है, बस गए दर्शन की आ गए, तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भौतिक संसाधन विकास है, इनका आपके सुख शांति परमात्मा के प्राप्ति में जरा भी उपयोग नहीं है। हाँ, व्यवहारिक जगत में बड़ा भारी उपयोग है, इस बात को प्राचीन मनुष्यों ने भी स्वीकारा है कि समाधो अंतराय वित्थाने सिद्धिया, वित्थान मतलब व्यवहारिक जगत में उपलब्धियां बहुत ही कामयाब है। तो यहां पर भी जब आघात होता है, आघात बोलते हैं चोट को, किसी का भी जीवन तभी उज्जवल होता है जब जीवन में आघात ठेस लगता है। वाल्मीकि जी को भी आघात लगा, और आघात दूसरे से नहीं लगा, उन्हीं के परिवार से। वाल्मीकि जी का कृत्य था प्रातः काल उठना, धनुष बाण लेके जंगल में जाना, प्राणियों का शिकार करना, और रास्ते में कोई मिले तो बस लूटपाट करके महीनों दिन फिर शिकार करने की जरूरत नहीं। संजोग बस एक दिन बाबा ये टकराए, वे थे नारद जी। नारद जी ने कहा भाई तो लूटपाट करता है, इतना हत्या करता है, इसके पाप को के फल को विचार किया? बोला कि सो तो विचार नहीं किया। बोले कि तू इतना जो लूटपाट चोरी हत्या करके परिवार का पोषण करता है, ये तेरे परिवार वाले जो पत्नी है बच्चे हैं इस पाप के फल के भागी बनेंगे? बोला वो तो मुझे पता नहीं। बोले तू पूछ क्या? वाल्मीकि ने कहा बहुत होशियार हो, मैं पूछने जाऊंगा आप तब तक चलते बनोगे। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि तू मुझे पेड़ से बांध दे, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं टस से मस नहीं होऊंगा। वाल्मीकि गए, घर वालों से पूछा, पहले पत्नी से पूछा, फिर बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कि मैं जो इतनी हिंसा करता हूं, चोरी करता हूं, निरीह प्राणियों का वध करता हूं, इससे जो पाप हो रहा है, इस पाप के फल को आप लोग भोगेंगे कि नहीं? कुछ इसमें भी हिस्सा आप लोगों का होगा कि नहीं? पत्नी ने कहा कि देखो तुम वो भरता पति, चाहे तुम चोरी करके भरण पोषण करो या कमा करके, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनने वाले। बच्चे भी यही जवाब दिए। वाल्मीकि को बड़ा वैराग्य हुआ, आघात लगा, चोट लगा, जिस पर भरोसा था कि हमारे अपने हमें हमेशा साथ देंगे, कभी हमारे से अलग नहीं होंगे। जब उन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं बनने वाले, तत्काल आकर चरणों में गिर पड़े और नारद जी ने बस राम मंत्र का उपदेश दिया। बेबी बेचारे जीवन में तो राम नाम कभी जपे ने, उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जैसे जो इस्कोन वाले हैं ना प्रारंभ में, इनको जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को जल्दी नहीं आता, दो चार वर्ष दो चार दिन नहीं, वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते कहते फिर कृष्ण कृष्ण हो जाता है उच्चारण, या टेढ़ा है ना कृष्ण शब्द, हम लोग तो आराम से बोल लेते हैं कृष्ण, परंतु वे बेचारे कृष्ण कहते हैं पहले। ऐसे वाल्मीकि जी को जब आघात लगा तो जो परिवार से चिपके थे या जो देहाध्यास था वह समाप्त बिखर गया। तो जीव जो अहंता ममता कर लेता है शरीर के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ, और इस पर जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य ही भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान है, चाहे किसी का जीवन हो, आप देख लीजिए, चाहे तुलसीदास जी हो या सूरदास हो, कोई महापुरुष हो, जब तक आघात नहीं लगता है तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, और बिना वैराग्य के विवेक नहीं जगता है। चाहे आप वेदांत के रास्ते से चलें या भक्ति से या योग से, वेदांत भी कहता है कि साधन चतुष्टय प्रथम सोपान है, योग दर्शन भी कहता है यम नियम प्रथम सोपान है। यम नियम भी वही बात है जो विवेक वैराग्य है। साधन चतुष्ट में जब आघात लगता है तो वैराग्य होगा, वैराग के बाद विवेक करते हैं। विवेक मतलब नित्यानित्य का विवेचन, क्या नित्य क्या अनित्य है, ये जो संसार है जो शरीर है ये नित्य है कि अनित्य है। जब आप विचार करते हैं तो विचार करने के बाद फिर ज्ञान का अवतरण होता है। यहां पर 16वें श्लोक में तांडव नृत्य जब भगवान शंकर करते हैं तो प्राणियों को आघात लगता है। जब आघात को आप हजम कर जाएं, तब जाकर के ज्ञान में एक तरह से निखार आता है। ज्ञान तो सबके अंदर है पर वह ज्ञान है वृत्त्यात्मक। वृत्त्यात्मक को सुखाचार्य जी कहते हैं आपात रमणीय ज्ञान है। ये आपात रमणीय का अर्थ होता है बिना विचारा हुआ ज्ञान है, अविचारित ज्ञान है। ये जो अविचारित ज्ञान है, आपात रमणीय जो ज्ञान है, जिससे कि अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, इस दुख में संसार में सुखत्व प्रकारिका बुद्धि हो रही है, और इसी ज्ञान को आपात रमणीय कहा है। और जैसे ही विवेक जगता है तो आप विवेचन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है या असत्य है। महाराज भोज को जब स्वप्न हुआ, स्वप्न में देखते हैं कि मैं एक भिखारी बन गया हूं, दर दर भटक रहा हूं, लोग मुझे भिक्षा नहीं दे रहे हैं। संयोग से भिक्षा मिल भी गई तो एक सांड आता है और सांड आक्रमण करके उस हणिया को गिरा देता है। अब बेचारे जोर से चिल्लाए, कई दिन के भूखे, मुश्किल से भिक्षा मिली, वो भी सांड जो हणिया गिराकर खाने लग गया, भूख के मारे चिल्लाए, नींद खुल गई। प्रातःकालीन सभा लगी तो सभा के समक्ष सभी विद्वानों से एक ही सवाल करते थे, यह सत्य कि वह सत्य। अंत में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि न यह सत्य न वह सत्य, स्वाप्निक प्रपंच जैसे मिथ्या है वैसे जागृत प्रपंच भी मिथ्या है। ये मिथ्या शब्द से जरा घबराना नहीं आप लोग, मिथ्या शब्द का जो है ना झूठा नहीं होता है, मिथ्या में झूठा में अंतर है। जो सीपी में चांदी दिखाई दे रहा वह और जो प्रत्यक्ष चांदी है, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक जगह कहीं बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में द्वैतवादी अद्वैतवादी को हरा दिया, परंतु राजा बड़ा विवेकी था। राजा ने कहा कि हमारा पक्ष भले हार गया परंतु अब मुझे कोई निर्णय करना चाहिए, जब हार गए तो राजा ने कहा कि आपने अपने तर्क बल से, बुद्धि बल से द्वैत मत को सिद्ध कर दिया। द्वैत मतलब कि सब कुछ सत्य है, झूठ कुछ नहीं। सीपी का चांदी बुन के मत से सत्य है, ध्यान रखना। सीपी में जो चांदी है, रश्मि में जो सांप है, वह भी सत्य है। सत्य मतलब कि अन्यत्र वस्तु थी, यहां पर उसकी प्रतीति मात्र है, पर वस्तु सत्य है। हाँ, व्यवहार झूठा है। व्यवहार अंश को तो असत्य मानते हैं, पर ज्ञान अंश में वे यथार्थत्व की सिद्धि करते हैं। क्योंकि जब ज्ञान हुआ तो मन में लोभ हुआ, लोभ होने के बाद लेने गए। तो ज्ञान अंश में सत्य है, व्यवहार अंश में उसका बाद होता है। व्यवहार मतलब जब लेने गए तो उपलब्ध नहीं हुआ तो लौट आए। तो तर्क बल से जो सत्य सिद्ध कर दिया तो राजा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं आपके तर्क से, आपने सीपी में चांदी सिद्ध कर दिया है। हमारे राज्य में जितनी भी सीपियां हैं उन सारे सीपी को मैं इकट्ठा करता हूं और आपको इनाम में वह चांदी से भेंट देता हूं। बेचारे पंडित जी पछताने लगे, बोले आपको तो इतनी ही चांदी कभी नहीं मिली होगी, जितना सीपी उस सीपी से आप चांदी निकाल कर ले जाइए, यही आपको इनाम दे रहा हूं। तो देखो, तर्क से भले आप संसार कुछ सत्य सिद्ध कर दें, परंतु ये सत्य नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ है व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब कि जब भूख लगती है तो आप सीधा भोजन करते हैं, ठंड लगने के बाद गर्म कपड़े पहनते हैं, और मान लो यदि गर्मी लगती है तो गर्म कपड़ा पहनेंगे। आप सारे कपड़ों को उतारकर एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। ऐसे ही जो व्यवहारोपयोगी है, जीवन से मृत्यु पर के बीच में जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, ये केवल व्यवहारिक है। ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं, यह शरीर भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। इसी व्यवहारिक को वेदांत के आचार्यों ने मिथ्या शब्द से कथन किया है। सत्य केवल एक मेवा द्वितीय आत्मा है, जिसका कभी बाध नहीं होता है। कभी मतलब कि न देश से, न काल से, न अवस्था से, न व्यवस्था से, जिसका परिवर्तन न हो वही सत्य है। जो मैं इस बंबई के प्रेमपुरी सत्संग में है वही मैं बद्रीनाथ जाने पर रहेगा। देश में बदलने से कोई अंतर नहीं हुआ, देश बदल गया। यहां से बद्रीनाथ की दूरी हजारों किलोमीटर है, पर वहां भी जाएंगे तो मैं बोलेंगे जैसा मैं यहां बोल रहे हैं। तो देश के बदलने से मैं में बदलाव नहीं आया। काल देखिए, जो बचपना में मैं था वही बुढ़ापे में मैं है, जो बाल्यावस्था में मैं था वही वृद्धावस्था में, तो अवस्था से परिवर्तन नहीं हुआ। और व्यवस्था मतलब कि जो अमीरी में मैं था वही जब आप गरीब हो गए तो भी वही मैं रहा। तो मैं पद का जो लक्ष्यार्थ है, जिसको कूटस्थ आत्मा कहते हैं, वह अपरिवर्तनीय है, वह अबाध्य है, उसी को परमार्थिक सत्य कहते, वही आपका अपना स्वरूप है। यह आपका सत्य विवेक है। परंतु जब आपात रमणीय विवेक होता है, अविचारित ज्ञान होता है, तो आप मैं पद के वाच्यार्थ को आत्मा मान लेते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है। समझदार व्यक्ति तो मैं के लक्ष्यार्थ को आत्मा समझता है, और ना समझ मैं के वाच्यार्थ को आत्मा। अब ऐतिहासिक तथ्य पर विचार करते हैं। प्राचीन काल में राजा सगर बहुत मशहूर हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा भारी सांप अश्वमेध याग किया। सम्राट पद पाने के लिए ये परंपरा थी कि राजा लोग अश्वमेध याग किया करते थे। अश्वमेध में याज्ञ अश्व को छोड़ा जाता था और वह जिस राज्य से गुजरता था यदि वहां का राजा उसको आदर दे तो समझा जाता था कि यहां की प्रजा और राजा प्रभुत्व स्वीकारते हैं। यदि कोई उसे पकड़ ले तो उसके साथ संग्राम करना पड़ता था। इधर अश्व चारों तरफ घूमते हुए बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचा तो वहां इंद्र अश्व को चुरा करके भागने लगे। भृगु ऋषि की प्रेरणा से सगर पुत्रों को मालूम पड़ा, उन्होंने इंद्र का सामना किया। इंद्र अश्व के साथ अंतर्धान हो जाते हैं और वहां से पुनः उस अश्व को लेकर छुपते हुए महर्षि कपिल के आश्रम में अश्व को बांधकर अंतर्धान हो जाते हैं। इधर सगर पुत्रों ने चारों तरफ अश्व को ढूंढा, जब अश्व नहीं मिला
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: तो इसलिए श्रुति माता भी कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते यतः यस्मात् मनस सहित वाचा निवर्तन्ते। कैसे? अप्राप्य मनसा सह, मन सहित वाणी लौट गई क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आप जो भी बोलेंगे वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष मूलक प्रमाण से बात करेंगे। मैंने ये देखा, मैंने इसके विषय में सुना, मैंने ऐसी चीज देखी है पहले भी, ऐसे बात करते रहते हैं। पर वेदांत का जो विषय है वो न तो प्रत्यक्ष है न तो परोक्ष है। परोक्ष मानी स्वर्ग, स्वर्ग प्रत्यक्ष किसी को नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक स्वामी ने बोल दिया किसी के मरने पे, हाँ वो तो धाम में बैठे हैं, इनको कैसे दिखवा, गप भागते, वो धाम में है कैसे मालूम पड़ा आपको, है कौन सा दूरबीन खुरबीन लिया आपने, और ये भी मानता है गए होंगे धाम में, ये क्या बात है, ब्लफिंग। सो परोक्ष है, स्वर्ग ऐसा है कि जो परोक्ष है। पर एक बात है, अगर मैं स्वर्ग की चर्चा शास्त्र में जो हुई है उसके रूप में निरूपण करो, रंभा है, उर्वशी है, नंदनवन है, फिर चिंतामणि है, फिर वहां का ऐसा अमृत है, वहां का ऐसा गंधर्व का संगीत है, ऐसा आप युवान रहेंगे, 20 साल से उम्र आगे नहीं बढ़ेगी, वहां ये मक्खी मच्छर नहीं होते हैं, क्लीन स्टराइल प्लेस, शादी की जरूरत नहीं है वहां, पहली बात ही सुखी हो जाएंगे तत्काल, तो ये सब बड़े आनंद से रहोगे वहां। ये वर्णन किया मैंने, आपको दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, पर जब अगर आप स्वर्ग में गए तो क्या होगा उसका। हाँ स्वामी जी ने ठीक बताया था, ये देवी आपका नाम क्या, उर्वशी, हाँ उर्वशी बहन केम छो ये कौन है रंभा, ये सब बुढ़िया है, याद रखना, युवान दिखती है सब बुढ़िया है, सब देखे जाएगा, ये क्या है, ये कल्प वृक्ष है, ठीक है। सो जो नित्य परोक्ष है वो भी कालांतर में प्रत्यक्ष होता है। प्राय हम लोग में अमेरिका गए नहीं है और बाल बच्चे वहां चले जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं मां आइए, पिताजी आइए, और उनकी बात में भूले भूल से भी आप आ गए तो फंस जाते हैं, वहां जाके कुछ करने का नहीं होता। इतने कंट्रोल इतने हदनी ऊपर कंट्रोल आ गए थे, एक जेल हो जाती है घर में बैठे बैठे, फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, अपना प्रेम पूरी अच्छा वापिस आ जाएंगे। और तुम लोग एक प्रेम पूरी अमेरिका में खोलो भाई, अब कंट्रोल आ जाएगा। यहां अभी अभी हमारे लिए परोक्ष है, कनाडा परोक्ष है, सिंगापुर परोक्ष है, अक्षेप्य परा, पर वो भी प्रत्यक्ष हो सकता है। सो जो प्रत्यक्ष मूलक सब कुछ है आखिर तो, पर एक ही चीज है जो है। यहां बौद्ध लोग आके कहेंगे हां शून्य है, शून्य न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, मानी आत्मा क्या है, शून्य है। वो तो लग जाएंगे हमारे पीछे, एक दूसरी गड़बड़ है। वंद्या पुत्र भी क्या है, प्रत्यक्ष के परोक्ष है। वंद्या हो सकती है, लड़का हो सकता है, वो वंद्या का बेटा षष्ठी संबंध नहीं हो सकता है। वंद्या सुतः एषो याति वंद्या सुतः, नहीं हो सकता है। तो ये वंद्या सुत का भी ये लक्षण है, प्रत्यक्ष भी नहीं और परोक्ष भी नहीं है। तो क्या कौन सी चीज है जो प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात नहीं है और जिसको जानना आवश्यक है, और वो है इसके लिए एक और प्रमाण का वर्णन कहते हैं, वो है वेदांत प्रमाण। वेदांत प्रमाण का भी वो विषय नहीं है डायरेक्टली, वहां वेदांत में शब्द का, वो भी उपनिषद के शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ को इंगित करके लक्षणा से लक्षित करके उसको फिर इशारा करके उसके विषय में बुद्धि में हम विद्या प्रकट करते हैं, शब्द लौट आते हैं, अपना काम करके वस्तु समझ में आ जाती है। इसको कहते हैं संप्रदाय। महावाक्य का जो उपदेश है उसका जो अर्थ है वो न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, पर महावाक्य मानी तू ही परब्रह्म है, इसका जो अर्थ है वो समझ में लाने के लिए आप कौन है, ईश्वर कौन है, उसका वाच्यार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ क्या है, ये शब्द धीरे धीरे संप्रदाय के अनुसार समझाया जाता है मानी पढ़ाया जाता है। शब्द फिर अपना अर्थ जो है वो देके शांत हो जाते हैं, वो इदम के विषय में नहीं। मैं आपको देखो दृष्टांत देखे बात करता हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां उपनिषद में आया अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मन अनंता, जो ब्रह्म तत्व है वो अनंत है। हम जो भी चीज जानते हैं प्रत्यक्ष से या परोक्ष रूप में, सब चीज परिच्छिन्न है मानी सीमित है। सबका जन्म है, सबका अंत है, सब कहीं ना कहीं देश में है, और सबका अपना अपना एक एक लक्षण है, गुण है, खट्टा मीठा काला गोरा सबका लक्षण है। देश काल वस्तु परिच्छेद है, और जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं वो देश में नहीं आ सकता है, पर देश जिसके कारण है, इट इज नॉट इन स्पेस बट बिकॉज ऑफ होम यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। जो काल में नहीं है पर जिसके कारण काल है, मानी वो नित्य है, काल का भी अधिष्ठान। तो यहां मैं शब्द का उपयोग करके लक्षणा से उसका इशारा करके और शब्दों को वापिस करके आपकी बुद्धि में उस अर्थ का आरूढ़ करता हूं। इसी को कहते हैं मौन व्याख्यान। होल टीचिंग इज बाय लक्षणा, महावाक्य लक्षणा। शब्द का सिद्धार्थ नहीं हो सकता है और शब्द का ही उपयोग करना है। यहां प्रायः लोग आपको कहते होंगे ये तो मन वाणी का विषय नहीं है, तो और क्या करेंगे? तो फिर कल प्रवचन क्यों करते महाराज आप? मन वाणी का विषय नहीं तो चले जाओ, या हमको कम टाइम बिगाड़ते हो। मन वाणी का जो विषय है वो प्रत्यक्ष इत्यादि है, और ये जो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप है उसको हम वाणी का उपयोग करके उसमें जो वाणी में जो मर्यादा है उसको तोड़ के उसका लक्षण लखा के शब्द को लौटा देते हैं। मानी मन और वाणी लौटते नहीं है, अपना काम करके लौटते हैं। फर्क पड़ गया? देखो कितना बड़ा फर्क। मन वाणी का विषय नहीं है, वो तो उससे ऊपर है, अतीत है, अतीत आत्मा है, सब चालू हो जाएगा। ये नहीं है भाई, ये मन वाणी का ही विषय है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही इसको जानना है। न मनसा मनुते ये न मनो आहुर मन तदेव ब्रह्मतम विद्धि। जिस मन का जो विषय नहीं होता है पर मन ही जिसका विषय है उसी को परब्रह्म कहते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं संप्रदाय। शंकराचार्य महाराज बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं असंप्रदाय वित्तु मूर्खवत उपेक्षणीय। जो ये संप्रदाय को नहीं जानता है और अपने आप लगाता जाता है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु बन गया हूं सीधा, छोड़ो स्वयंभू गुरु, ये सबको क्या करना है? उनकी बात सुन के अपना समय गंवाना है। मूर्ख की बात सुनोगे तो क्या फायदा होगा? शंकराचार्य मूर्ख कहते हैं। आप देखिए संप्रदाय किसको कहते हैं, अध्यारोप अपवाद। पहले शब्द के ऊपर अर्थ का आरोप करके फिर उस अर्थ को दूर करके जो वस्तु है उसको लखाते हैं, इसी को कहते हैं अध्यारोप अपवाद। ठीक है, मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम। दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति युवान है। दो प्रकार के युवान है, एक तो काल में बाल्यावस्था कुमार अवस्था पौगंड कुमार और युवा अवस्था को प्राप्त होता है, इसको कहते हैं युवा। दूसरा युवा शब्द का अर्थ है जो नित्य है, जो न काल में पैदा होता है न मरता है, इसलिए भी उसको नित्य युवा कहते हैं। तो दक्षिणामूर्ति काल की दृष्टि से क्या है? कालातीत है, इसलिए युवा। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैहि, और उनके पास अन्तेवासी अन्ते समीपे वसती, जो गुरु के नजदीक जाके पढ़ने के लिए बैठता है गुरु के आश्रम में रहकर, उसका नाम होता है अन्तेवासिन। आपका बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है तो क्या हो गया? अन्तेवासी। आपने ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लिया, रोज वहां 3 घंटे बैठते हैं, क्या हो गया वहां? अन्तेवासी। कौन है दक्षिणामूर्ति के नजदीक पढ़ने के लिए? कौन कौन आए विद्या अभ्यास के लिए? वर्षिष्ठान्ते। ब्रह्मनिष्ठ जो वशिष्ठ आदि भी है, सनक आदि भी है, वसत ऋषि गणई ही, ये ऋषि, ऋषि का अर्थ ये नहीं होता लंबा दाढ़ी मानी ऋषि, हम लोग का एक गड़बड़ है मगज में, लंबा दाढ़ी और लंबी जटा और टी, ये ना हाथ रखने के लिए, ऐसा आ गया तो क्या हो गया, परम योगी ऋषि हो गया। ऋषि शब्द कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, असियर जो दृष्टा है, आर्ष दृष्टा है, रुषंति जानंती, जो जानता है और जिसको हरेक विषय स्पष्ट है और उसकी स्पष्टता उसके व्याख्यान में भी है, उसको कहते हैं ऋषि। पहली बात हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें सचमुच में हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जिसको हम सचमुच में चाहते हैं वो कैसे प्राप्त हो। तीसरी बात, जिससे ये प्राप्त होता है वो कहां मिलेगा। तो बताया गया अमुक औषधि से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे ये बता दिया, सबसे बड़ा काम क्या था, अभी कहां है औषधि, है ना, हिमालय में है। हनुमान जी बहुत प्रैक्टिकल है, ये वैद्यराज बोलेगा ये नहीं ये है करके गड़बड़ करेगा, पूरा का करे पूरा पहाड़, माने पूरे औषधि की दुकान लेके घर में आ गए, ऐसे क्या है, देख लो ढूंढ लो भी, माना गड़बड़ मत करना। तो हमको जो चाहिए वो मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी, वेदांत विचार से। वेदांत विचार कहां किया जाएगा, सदगुरु के पास। सदगुरु कौन है, जो वेदांत विचार कराए। वेदांत विचार कौन कराएगा, सदगुरु। सदगुरु कौन है, अभी गड़बड़ हो गया ना, इसको कहते अन्योन्य आश्रित। प्रातस्मरणीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको एक दृष्टांत दिया था, मच्छर लोगों को एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है हवा। हवा का झोंक आता है ना तो उड़ जाते बेचारे, तो सब मच्छर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ये हवा हमको कहीं टिकने नहीं देती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हवा को बुलाओ, दोनों साथ में होंगे तब न्याय होगा, जजमेंट हो जाएगा। जब हवा को बुलाई तो मच्छर उड़ गए तो अभी तक न्याय नहीं हुआ है When one is other is not, दूसरा दृष्टांत यह है, लड़का थोड़ा सा गुजराती में कहे पावली गैप, सूरत नहीं भाषा में कातरियो फरी गई, तो थोड़ा कम था गड़बड़। तो लोगों ने कहा इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, पागल की शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अभी तकलीफ यह है कि शादी कब होगी, ठीक हो जाएगा तब, और ठीक कब होगा मानी, और अगर कोई भी तय भी कर दे तो उसका उसका पड़ोसी वो बोल देगा ये गड़बड़ है, अकेला अकेला बोलता है, जब तक उसका पड़ोसी है वो कभी शादी तय नहीं होने देगा, और जो भी आएगा उसको बोलेगा यहां गड़बड़ है, भगवान है, कोई वादा नहीं, कर लो, भगवान है आप कर लो, पर गड़बड़ है, इसलिए अन्योन्य आश्रित हो गया। प्रमाण का विचार करना चाहिए, किसके पास जाए, गुरु। गुरु कौन है, प्रमाण का विचार करेगा, तो कैसे मालूम पड़े गुरु कौन है। गुरु का लक्षण यह है कि जिसके सत्संग में बैठने से भी मुझे स्पष्टता आ जाए, और मुझे स्पष्ट है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा ये हमको दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपने संगीत का अभ्यास 6 साल किया है और आगे संगीत का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा कि ये उस्ताद हमको सिखा सकता है कि नहीं, उनका ज्ञान देख के हमको मालूम पड़ेगा। प्रोफेसर कौन हमको पढ़ा सकता है, हम इतने एमएससी तक पढ़े हैं। तो ऐसे ही वेदांत में भी है, जिन्होंने ये प्रेमपुरी बहुत अच्छी जगह, यहां संस्कार होता है, और इस संस्कार के द्वारा क्योंकि मालूम पड़ता है क्या ब्रह्म है, क्या जिज्ञासा है।

ब्रह्मनिष्ठ बनने वाले हैं, इसलिए अभी से उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाइए, ये फर्स्ट ईयर मेडिकल में जो पढ़ता है ना लड़का, वो भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, सेकंड ईयर वाला भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, एप्रोन लगा के घूमेंगे बड़े प्रेम से। और उनको क्या कहा जाता है, विद्यार्थी कि डॉक्टर? प्रेमपुरी वाले को एक टूर लगाओ वहां, मालूम पड़ेगा क्या बोलते हैं। उनको भी क्या कहा जाता है, डॉक्टर। जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली उसको क्या कहते हैं, ये दिल्ली की दिल्ली ट्रेन है, ये दिल्ली गई नहीं, यहीं खड़ी है बंबई में, दिल्ली जाने वाली ट्रेन को भी क्या कहते हैं, दिल्ली ट्रेन। मेडिकल में डॉक्टर बनने वाले को भी क्या कहते हैं, डॉक्टर। ब्रह्म ज्ञान जिसको होने वाला है उसको भी क्या कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ। आप लोग का एक नया नाम मिल गया आज, कितना आनंद है। पहले तो धन्यवाद इतनी वर्षा में आप लोग आए, आज आपका नाम क्या है, सब आपको प्रणाम करता हूं, अरे ब्रह्मनिष्ठ। एक बात है, प्रेमपुरी में आने वाला ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मरने के बाद जा नहीं सकता, क्यों, इतना वेदांत सुना है। यमराज भी कहेंगे भाई इनको छोड़ो, ये वहां के और लोगों को बिगाड़ेगा, इनको वहां के उपदेश करने लगेगा, नरक वाला गड़बड़ करेगा, इसको यही रहने दो, जब तक ज्ञान ना हो तब तक प्रेमपुरी में रहे, वापिस यही आएगा। वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। अब आप देखिए, दक्षिणामूर्ति की चारों ओर जिज्ञासु तत्व ज्ञान ग्रहण करने के लिए विराजमान है। गुरु वो व्याख्यान कर रहे हैं जिसमें लक्षणा से ही वस्तु ग्रहण की जा सकती है, इसका अर्थ है वेदांत प्रमाण का विचार कर रहे हैं। और गुरु की मुद्रा है, आप देखिए यहां श्री कृष्ण का चित्र लगा है ना सब जगह, नहीं रक्षा रथ वाला, प्रपन्न पारि जाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्रा, चिन मुद्रा, भद्र मुद्रा, उनकी भी मुद्रा क्या है, समग्र अध्यापन जो करा रहे हैं, ऑल टीचिंग एक मुद्रा में उसका परिसमापन हो जाता है। मुद्रा क्या है, ये तर्जनी जो है वो अंगुष्ठ के साथ मिला के वहां एक सर्कल वर्तुल बन गया है, और ये तीन उंगलियां अलग है, छोटी वाली सत्व, मधली रजस, और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हम लोग में क्या है, हाँ, आप लोग में उल्टा भी हो सकता है। ये आंसर देने में भी देर लगती है, इसका अर्थ है क्या है, तो तमस, तो सत्व रजस तमस जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन, ये संसार है। अगर ऐसा करोगे ये क्या होगा, कांग्रेस आई मत बोलना, ये क्या है। ये संसारी है, फिर ऐसे करेंगे वो लोग तो, ये जो है। पर जब गुरु की मूर्ति पढ़ाते पढ़ाते संसार से धीरे धीरे ये तर्जनी मानी लड़ने के लिए अंगली, आप देखो जब भी लड़ाई करते तो अंगली कैसे आती, आगे ये आती है, जब करने भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये तर्जनी अहंकार है, मैं अहंकार, और ये सबसे अलग रहता है अंगुष्ठा, और सब उंगलियों को वही शक्ति देता है, इसलिए ताजमहल बनाने वाले लोग बेवकूफ थे सचमुच, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंगूठा कटने वाला है। देखो कितने भयंकर वहां के लोग थे, मैं कभी ताजमहल देख नहीं सकता, मुझे ये सब याद आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, कितनी क्रूरता है इन लोग में।

0: काट दिया सबका अंगूठा, क्यों? अभी दूसरा नहीं बनाएगा। अरे भाई दूसरा बनाने दो, कौन बना सकता है तुम्हारा जैसा? तो ये अंगुष्ठ कट जाएगा तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा? कोई काम का रहेगा? ये दूर है, सबको प्राण शक्ति क्रिया शक्ति देता है। ऐसे ब्रह्म तत्व सबसे अतीत है, सबको धारण पोषण करता है, इसलिए अंगुष्ठ क्या है? पूर्ण ब्रह्म। अभी पूर्ण ब्रह्म संसारी से अलग है, ये चलते चलते तत्व ज्ञान हो गया मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, और ये जो गोल हो गया इसका आदि भी नहीं है अंत नहीं है, इसलिए पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई। इसको क्या कहते हैं? चिन्मुद्रा, भद्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, है ना? ज्ञान मुद्रा श्री कृष्ण ने भी यही धारण किया था। इसके द्वारा हमको हंसी की बात यह आती है, मैंने एक ब्रह्मचारी को पूछा था ये क्या मुद्रा है, तो उन्होंने कहा चिकनी नसु के हिंदी में बजर, ये बजर की मुद्रा है, उसमें बजर रखते हैं फिर लेते हैं, यही हो जाएगा, ये भी मुद्रा कर दोगा। तो चिन मुद्रा, चिन मुद्रा के द्वारा क्या करते हैं? करकलित चिन मुद्रमानंद रूपम, और आनंद मूर्ति है, और मुखारविंद प्रसन्न है। देखो एक बात है, आत्मा आनंद है ऐसा जब वर्णन करते हैं तो हृदय में आनंद होगा कि दुख होगा? और ये नहीं कि आत्मा आनंद रूप है, हम तो संसारी है, ऐसे नहीं वर्णन है। मैं आनंद हूं और ईश्वर कृपा से आप भी क्या है? आप भी आनंद है। ये नहीं कि आत्मा आनंद है, तुमको आनंद को प्राप्त करना है, मैं तो दुखी संसारी हूं, ऐसे नहीं बात करते गुरु। गुरु कहते अहम आनंद है त्वम अभी वाट आनंद। तो ये जो आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं, आपने कभी देखा होगा स्वामी परम पूज्य महाराज श्री का मुखारविंद हमेशा मुखारविंद पे क्या था? मुदित वदन, मुदित वदन माने जस प्रसन्नता, हसित प्रहसित, ये नहीं अट्टहास्य नहीं, जोर से ना, मुदिता। आनंद स्वरूप का चिंतन करते करते, वर्णन करते करते मुखाकृति भी क्या है? मुदित वदन, दक्षिणामूर्ति है। मैं कभी भी मूर्ति देखती हूं दक्षिणामूर्ति, कल तक मैं कोयम्बतूर में था, ये पत्थर की मूर्ति में मुखारविंद पे इतने सुंदर स्मित को प्रकट करना, ये सचमुच हमको आश्चर्य होता है। प्रसन्न वदनम, व्हाट अ थिंग। स्वात्मा रामम मुदित वदनम, स्वात्मनी स्व आत्मनी आराम, जो अपने आराम आत्मा में ही आनंद में मस्त है। आत्मनी आत्मना तुष्ट है, यह है दक्षिणामूर्ति, उनकी मैं स्तुति करता हूं, भजन करता हूं। कल श्लोक लेंगे आगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: और इसका दूसरा अर्थ है नारायण, ये कंपन भी अर्थ होता है। अब आप दो तीन अर्थ हैं इसके, इसको थोड़ा संक्षेप में आप देखते जाए। यहां जो धातु है ना नचिकेता में, कंपन अर्थ में भी धातु है, और यहां न चिनोति माने न कंपयति इति, जो कंपित नहीं होता है। और दूसरा अर्थ स्राव भी है। जब हम बाहर के पदार्थों को देखते हैं ना तो हम कंपित हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं, हिलते हैं कि नहीं, सही। जैसे आपने दूसरे का मकान देखा और जैसे मकान देखा तो आप हिल जाते कि नहीं? बहुत हिलते हैं। आप दूसरे की उन्नति आपने देख ली और उस समय हिल गए, आहा हमको मिल होती तो कितना अच्छा होता। तो बाहर के पदार्थ हमको विचलित कर देते हैं, हमारे मन को कंपित कर देते हैं और कंपित होने के बाद फिर श्राव, ये श्राव भी अर्थ है, यहां तीनों अर्थ एक साथ लगा देंगे तो आपको सरल होगा समझने के लिए। चयन करना, चयन करने के बाद कंपित होना और कंपित होने के बाद फिर बाहर से भीतर से बाहर निकलना, ये क्रम से तीनों अर्थ लगा लीजिए। जब हमारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों को देखती हैं तो क्या करती हैं? चयन करती हैं, बाहर के पदार्थों को भीतर करती हैं और भीतर आने के बाद फिर हम अंदर से कंपित हो जाते हैं और कंपित होने के बाद फिर भीतर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम बहिर्मुख हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको सूत्र कहा था, ये बाहर के पदार्थ हमको बहिर्मुख बना देते हैं, हमारे भीतर की वासना को जगाते हैं, हमारे इंद्रिय भाव को जगा देते हैं। बाहर के पदार्थ हमारे इंद्रिय भाव को जगाते हैं, ये बात अपने को समझनी है। जब हम हमारे पास इंद्रियां हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होती कि हमारे पास इंद्रियां हैं, लेकिन बाहर के पदार्थ जब हम देखते हैं और हमारे भीतर की जब वासना जग जाती है तो क्या होता है? हमारा इंद्रिय भाव जग जाता है, उस समय हमारी इंद्रियां जगने लगती हैं और वो इंद्रियां फिर मालूम होने लगती है हमारे पास इंद्रियां हैं, आंख खुल जाती है कि नहीं, आप बैठे हैं और जग कर रहे हैं और उसी समय आपके किचन की सुगंध आ गई और नाक में पहुंच गई। आहा क्या सुंदर है। अभी अभी मैं टीवी में देख रहा था, वो जगा रहे थे कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण को जगा रहे थे। अरे क्या कुंभकर्ण, वो भाले चुभो रहे थे कान में नाक में, हाँ भाले चुभो रहे थे, वो कुछ नहीं घुर अपना सो रहा था और लेकिन जैसे उन्होंने भोजन बड़े बड़े पात्र भर करके वहां भोजन लाया गया और उसकी सुगंध उसके नाक में पहुंची और जैसे नाक में पहुंची तो उसकी नाक खिलने लगी, फिर ओहो आहा बहुत बढ़िया मजा आ गया, फिर आंखें खोली। अरे ऐसे ही तो है, हम आंख बंद करके जप कर रहे हैं और उसी समय सुगंध आई तो कैसा लगता है? अब धीरे धीरे फिर अंदर से कंपित हो जाता है वो आदमी और कंपित होने के बाद फिर आपकी इंद्रियां जगने लगती हैं, फिर आपकी वासना जग जाती है और फिर आपके मुख में पानी आने लगता है। ये मुख में पानी आने का ही मतलब है आप अब तैयार हो गए, आप खाने के लिए तैयार हो गए। यही है चयन करना, भीतर से कंपित होना और उसके बाद फिर स्रवित हो जाना, फिर बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उतावला हो जाना, यही तो है ना चयन का अर्थ, ये जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन बालक नचिकेता के जीवन में नारायण ये तीनों चीजें नहीं है। बालक नचिकेता दुनिया को भी देख लेते हैं लेकिन उनके अंदर कंपन नहीं, हाँ। और उसके बाद फिर वो बहिर्मुखता भी नहीं है, बाहर आना भी नहीं है, बस ठीक है, ये तीनों चीजें। और इसीलिए बालक नचिकेता उच्च कोटि के अधिकारी हैं, उच्च कोटि के अधिकारी हैं। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के सारे लक्षण बालक नचिकेता में हैं, इसलिए कहते हैं तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, इतना प्रबलतम। और वो ऐसा प्रबलतम प्रज्ञा का धनी वेदांत का अधिकारी बालक नचिकेता उनके पास बैठे हैं, ये बात भी है यहां। तम ह नचिकेता नाम पुत्रास, ऐसा श्रुति कह रही है ना, तो ऐसा लगता है कि श्रुति कहना चाहती है उषण हवय वाजस्रव सह, उनके पिता बड़े लोभी हैं और सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं और वो कर्म करते समय वैगुण्य का संपादन कर रहे हैं, कुछ कमियां रह गई लेकिन चिंता की बात नहीं, नचिकेता नाम पुत्रास, समझ गए ना, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, नचिकेता जैसा उनका बेटा है, बेटा माने वो बचा लेगा, आज श्रुति संकेत कर रही है। अब ऐसे पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना उच्च कोटि का पुत्र है कि अपने पिता को गिरते हुए पिता को भी बचा लेगा। हाँ, ऐसा कई बार होता है, अरे उसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका पति बहुत अच्छा है। हाँ, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका दोस्त बहुत अच्छा है। इसलिए जहां पर भी नारायण आप में पुण्य है, आपके साथी ऐसे होंगे आपकी मदद करने के लिए। आपका बेटा ऐसा होगा कि आप गिरते हुए बाप को भी बचा लेगा। बाप इतना पुण्यशाली होगा कि गिरते हुए बच्चे को भी उठा लेगा। मेरे पास ऐसे दो कुछ केस हैं। बाप बिल्कुल नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक, न मंदिर में आता है और न महात्मा के पास आता है, बिल्कुल नास्तिक है। और यहां तक कि वो रोकता भी है, क्या जाना है मंदिर, शराब पीता है, खूब मस्ती करता है, उसका छोटा सा बच्चा, और वो मंदिर में आया है। और मंदिर में आने के बाद वो मुझे देखता है, ये कपड़ा बंधा हुआ है, पहले तो इसमें गाती बांधता था ना, वो गाती बंधी है, अरे ये क्या, ये किस लोक से आया हुआ आदमी है। छोटा सा बच्चा देखता है, ये क्या है, ये रंग, ये रूप, और वो बहुत मस्त, उसको लगता है ये क्या चीज, उत्सुकता जगती है। और अपने माँ को पूछते हैं, मम्मी ये कौन है, तो मम्मी मजबूर बोलते, चलो यहां से चलो, ये बाबा है, पकड़ के ले जाएगा। ये सत्य घटना है, दो तीन केस अपने पास है। उसको मम्मी बोलती कि चलो चलो बाबा है, बाबा है, नजर बचाती हूँ मैं, देख रहा था, नजर बचाती हूँ, बाबा है, पकड़ के ले जाएगा। वो बच्चा बोलता है, पकड़ के क्यों ले जाता है मम्मी, तो मम्मी डांटती है, तो लेकिन बार बार पूछता है कि मम्मी पकड़ के क्यों ले जाता है, फिर हमको क्या करता है, वो सब पूछता है वो। और वो दूसरे दिन आग्रह करता है कि मम्मी चलो गीता भवन, वो बाबा है ना, और वो देखते हैं हम लोग कैसा है बाबा, और रोता है बच्चा, और वो रोते हुए अपने माँ को ले आता है, और दूसरे दिन दूर से वो दिखाती है, वो देखो बाबा है। वो बच्चा बोलता है, मम्मी चलो वहां चलो, और वो बोलते नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, पता नहीं वहां क्या है, क्या चलता है, उनके कमरे में कौन आते हैं, हमको पता नहीं, हम कभी जाते नहीं। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि नहीं आप चलो मम्मी, अंगुली पकड़ के खींचता है। और उसके बाद वो उसकी मम्मी दूसरे को पूछती है कि ये महात्मा कौन है, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा है कि उनके पास चलो। और लोग बोलते कि नहीं बहुत अच्छे हैं, वृंदावन से आए साधु और मिलने के लिए जा सकते हैं। और वो डरती डरती वो अपने बच्चे को ले आती है, और आश्चर्य की बात वो बच्चा आता है और आके चुपचाप गोद में बैठ जाता है, और इतना प्रेम होता है उसका, इतना प्रेम होता है कि रात्रि के समय जग करके बोलता है अपने मम्मी को कि मम्मी स्वामी जी के पास ले चलो। और उसके पिता को मालूम पड़ता है कि ये बवाल क्या है। और वो बवाल देखने के लिए आता है गीता भवन, वो कि देखने के लिए कि मेरे बच्चे को जिसने इतना पागल बना दिया वो है कौन, वो पूरा खबर तो लूं मैं। और उसके बाद फिर वो भी चेला बन जाता है, वृंदावन आता है, क्या भगत बन जाता है। देखो ये पुण्य का प्रभाव, बच्चे के पुण्य का प्रभाव। आज इसीलिए कहते हैं, अरे इसकी कोई चिंता नहीं, बेटा बहुत अच्छा है। इसलिए आप अच्छे बनना, और आप रियल में अच्छे बनना, तो आपके आसपास के लोग तो अपने ऐसे ही करते जाएंगे बस, लेकिन बनना आपको है। इसलिए श्रुति कहती है उनके पिता ऐसे हैं, लोभी हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं, नचिकेता जैसा उनका बेटा है। फिर क्या हुआ, तो श्रुति आगे कहती है, तम कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश सो अमन्यता। सा कुमार संतम, अब श्रुति कह रहे हैं, अब वो कुमार कैसे था, नचिकेता कैसे था, कुमार संतम, हाँ छोटा होता हुआ, अब ये कुमार क्रीड़ा अर्थ में क्रीड़ायाम धातु है, और ये कुमार क्रीड़ायाम धातु से कुमार शब्द बनता है, और कुमार शब्द का अर्थ होता है खेलने कूदने की उम्र। कुमार शब्द का अर्थ होता है कुत्सितम, कु माने कुत्सितम, मार माने कामादि, यस्य स कुमार, जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ आदि मनोवृत्तियां अभी उदित ही नहीं हुई हैं। कुमार का अर्थ यही है, कुमारिका का अर्थ यही है, जहां कामादि तिरस्कृत हैं, अभी प्रकट नहीं है, है ही नहीं, ऐसा बालक नचिकेता, कुमार संतम मने छोटा होता हुआ भी, कुमार होता हुआ भी, उन्होंने देखा दक्षिणासु नियमानासु। गायें दक्षिणा के लिए लाई जा रही हैं और उन्होंने देख करके श्रद्धा अविवेशा, श्रद्धा का उनमें आवेश आ गया। अब श्रुति बहुत अच्छे शब्द का चयन कर रही है, क्योंकि श्रुति सूत्रात्मक है, उसको व्याख्यान नहीं करना है, और सूत्रात्मक उनको बहुत गहरी गहरी बातें कहना है, भाव व्यक्त करना है। जब उन्होंने दक्षिणा के लिए लाई गई गायों को देखा तो श्रद्धा आविवेशा, उसमें श्रद्धा का आवेश आ गया। यहां श्रुति क्या कहती, श्रद्धा का आवेश आ गया, आवेश का मतलब समझते हैं ना। यहां श्रुति ये नहीं कहती कि उनमें श्रद्धा जगी, ऐसा भी नहीं कह रहे, आवेश आ गया, आवेश आवेश, और आवेश में का मतलब होता है पराधीनता। जैसे आपके अंदर भूत का आवेश आ जाए, कभी आपने देखा है किसी में भूत का आवेश आया? पहले तो आपको यही नहीं मालूम है भूत होता होगा कि नहीं, मान लो, कल्पना करो। अब ये विषय मेरा नहीं है ना, होता है कि नहीं ये तो विषय मेरा नहीं है, जब प्रसंग आएगा तो कभी बता देंगे। आप श्रवण करते, इसमें आवेश आ गया है, और जब आवेश आता है ना तो उस समय उस आवेश में आप आधीन हो जाते कि पराधीन हो जाते, आप स्वतंत्र रहते कि आप पराधीन हो जाते, उस समय आप पराधीन हो जाते, आवेश आ गया, आप में आवेश आ गया है, आप उस आवेश में, आपका नियंत्रण आप पर नहीं है, आपका नियंत्रण आप पर नहीं, और आपका नियंत्रण यदि आप पर है तो उसको आवेश बोलेंगे क्या, उसको आवेश कहां से बोलेंगे। तो यहां पर श्रुति कहती है बालक नचिकेता में श्रद्धा का क्या आया, आवेश आया, आवेश। हम लोगों में भी श्रद्धा है, देखो कैसी श्रद्धा होती है हम लोगों की। जैसे आप भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद आपके अंदर श्रद्धा जगी कि मैं मंदिर में जाके दक्षिणा चढ़ाऊं, और उस समय फिर कैसे चढ़ाते हैं, आप जेब में हाथ डालते, इधर इधर इधर इधर, मिल रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप देखते कि सबसे छोटा नोट कौन सा है, आप क्या करते हैं, सबसे एक बार यहां कहां की बात है, घाटकोपर की बात है, एक किसी माई ने मुझे दक्षिणा चढ़ाई, जैसे प्रवचन खत्म हुआ तो जैसे मैं ऊपर जाने लगा आई और उन्होंने दक्षिणा चढ़ाई, मैंने देखा नोट बहुत वजनदार लगा, मैंने सोचा कि बहुत नोट वजनदार लग रहा, बात क्या है, देखा 1000 का नोट, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये इतना तो कभी चढ़ाती नहीं और 1000 चढ़ाया, बिल्कुल गड़बड़ है कुछ। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ी का पैसा और ये ठीक नहीं है और ये गड़बड़ी ठीक कर लेनी चाहिए, फिर मैं रुक गया और मैं दूसरे से बातचीत करने लगा, मैं जानना चाहता था कि ये सचमुच दिया है कि गलती से आया है। और वो माई भी खड़ी थी और वो भी प्रसन्न थी, उन्होंने मुझे दक्षिणा दी थी, तो मैंने धीरे धीरे वो नोट इधर देखते देखते खोलते खोलते ऐसे दिखाने लगा उसको कि देखो ये नोट आपने चढ़ाया है, और उसने देखा 1000 का नोट, और देखने के बाद इतनी घबरा गई वो, और चट से उन्होंने थोड़ा साइड होके पर्स खोल के देखा, ओ ये नोट मेरा है, चढ़ाना था 10 का और चढ़ गया। मैं खुश हुआ, हाँ स्रोत का पता चल गया, और फिर मैं वो नोट ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल से मैं देख नहीं रहा हूं, अभी तक मुझे मालूम ही नहीं कि 10 का है कि 100 का है कि 1000 का है। तो उसके बाद उन्होंने अपने साइड गई और 10 रुपए का नोट उन्होंने निकाला और मुझे बोलने लगी, महाराज आपका हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, और फिर मैंने यूं हाथ किया तो उन्होंने धीरे से चट से उठा लिया और उन्होंने फिर 10 का नोट थमा दिया। मैं बहुत खुश हो गया, आहा बोझ हल्का हो गया। आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आप श्रद्धा से भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन आवेश में रहते हैं क्या? देखो आवेश का मतलब समझ मालूम है, आप आवेश में जब होते हैं तो आप अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हो जाते, आप श्रवण करते ना, अशोक सम्राट ने यज्ञ किया और यज्ञ करते समय वो दान करने लगे और वो श्रद्धा आविवेश और ऐसा श्रद्धा कि नारायण जो भी हाथ में आए उसको अरे दान को लुटा रहे और सब कुछ लुटा दिया और अंत में फिर सारा खजाना खाली, फिर जो भी गहने थे वो भी उतार के बांट दिए और उसके बाद फिर अपने कपड़े भी उतार के देने लगे। कोई आया और सारी चीजें खत्म, उठा उनके बहन ने रोका, रुको भैया रुको, कम से कम वस्त्र तो रखो। इसको बोलते श्रद्धा आवे। शास्त्र की श्रद्धा यदि आपके अंदर है तो आवेश होता है उसमें, उस समय आपका विवेक खो जाता है। श्रद्धा का आवेश यदि व्यक्ति में होना, शास्त्र पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के आवेश में व्यक्ति फिर कुछ भी कर देता है। ये श्रद्धा का प्रभाव। आप श्रद्धा में जब होते हैं ना, आवेश में होते हैं, तो आपका जो शास्त्र है ना आप वही करेंगे, आप मर मिटने के लिए तैयार होंगे, श्रद्धा का आवेश आ गया। आप यहां बालक नचिकेता के मन पर श्रद्धा का आवेश प्रकट हो गया और उसके बाद फिर नचिकेता का मन नचिकेता के हाथ में है कि नहीं? अब नहीं, अब बालक नचिकेता पराधीन हो गया है। सत्य का आवेश, ये श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा है ना सत्य, पर मुझे महाराज जी कहते हैं श्रद्धा में सत है, सत और धा मने बुद्धि, जो सत की जो बुद्धि है ना उसी को बोलते हैं श्रद्धा। सत्य का आवेश हो गया। आज बालक नचिकेता के मन में सत्य का क्या हुआ है? आवेश। और अब वो उसके अधीन हो गए, उस सत्य के अधीन हो गए, आवेश आ गया और उसके बाद फिर वो सोचने लगे मेरे पिताजी अनुचित गायों का दान कर रहे हैं और ये अनुचित गायों का दान अच्छा नहीं, मेरे लिए गाय बचा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो अधीन नहीं है। और नारायण अधीन जब आदमी नहीं होता है तो वो किसी न किसी प्रकार अपने भाव को प्रकट करने के लिए उतावला हो जाता है। श्रद्धा अविवेश सो अमन्यत, आवेश का प्रभाव। आवेश आविष्कृत हुआ, आवेश विचारों में परिष्कृत हुआ और वो सोचने लगे। यहां तीनों चीजें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये तीनों चीजें बालक नचिकेता में दिखाई देती। श्रद्धावान ये श्रद्धा, आविवेश श्रद्धा का आवेश हुआ और श्रद्धा के आवेश के बाद फिर तत्परता। तत्परता का मतलब होता है श्रद्धा आपके अंदर है और वो श्रद्धा यदि आपके जीवन की तत्परता नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा है और तत्पर हो गए और चलो हम पूजा करेंगे, चलो हम सत्संग करेंगे, ये क्रिया में व्यक्त होती है। श्रद्धा आपकी जब क्रिया में व्यक्त होती है ना उसको तत्परता बोलते हैं। श्रद्धा जब आपकी आचरण बन जाते हैं ना तो उस आचरण को ही तत्परता बोलते हैं। आप में श्रद्धा बनी और उसके बाद भी आप शांति से बैठे हैं, आप सो रहे हैं तो तत्परता बनी नहीं, श्रद्धा कहां से आई? इसलिए आज यहां नारायण तत्पर हो गए, बालक नचिकेता तत्पर हो गए और वो तत्परता वो सोचने में प्रकट हो गई। सो अमन्यता। और कुमार संतम में कुमार शब्द का द्योतन उनकी इंद्रिय संयम का द्योतन, माने बालक में श्रद्धा भी है, इंद्रिय संयम भी है और तत्परता भी, ये तीनों चीजें बराबर हैं बालक ने चिकित्सा में। सो अमन्यता, वो सोचने लगे। अब वो क्या सोच रहे हैं? पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका तांस तांस गच्छति ता ददत। अब वो कितनी उच्च कोटि की बात सोच रहे हैं, आवेश में सोच रहे हैं। आप सोचते समय इन्होंने होश खो दिया है और वो सारा शास्त्र उनके जीवन में उतरा और आश्चर्य की बात ये सारी चीजें अपने पिता से सुनी है। आज श्रद्धा आस्तिक्य उनके मन में जो निर्मित हुई और ये श्रद्धा उन्होंने कहां से सीखी? अपने ही पिता से सीखी। श्रद्धा क्या है, शास्त्र क्या है, अपने पिता से ही सुना था उन्होंने कि बेटा दान भी करना तो सही करना। लेकिन आज बालक नचिकेता सोच रहे हैं ये आदेश तो मुझे पिता ने दिया था और आज पिता ही क्या कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर नारायण वासना प्रकट होती है ना, वो हमारे श्रद्धा को खा जाती है। वासना हमारे श्रद्धा को खा जाती है। आपके अंदर श्रद्धा है लेकिन उसके साथ साथ वासना भी है, तो वो वासना आपके श्रद्धा को समाप्त कर देती है। फिर अब यहां पर भी श्रद्धा है, शास्त्र का ज्ञान है, उद्दालक के जीवन में सारी चीजें हैं, लेकिन पुत्र मोह है, वासना है, और उस वासना के कारण शास्त्र की श्रद्धा और उस शास्त्र का ज्ञान भी नारायण वहां खो चुका है। माने उपदेश तो किया उन्होंने अपने पुत्र को, लेकिन वो स्वयं अपने जीवन में आचरण नहीं कर पाए। इसलिए कई बार जो चीज छोटे बच्चों में आती है ना, वो बड़े बड़े में नहीं आती। ऐसा होता है कई बार बच्चे भी बहुत अद्भुत बात बोल देते हैं जो आपके दिमाग में कभी नहीं आ सकती। एक सामान्य आदमी भी कई बार बहुत ऊंची बात सोच जाता है, बहुत ऊंची बात कर जाता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि वो छोटा है। जो बड़ों के दिमाग में नहीं आती वो बात छोटों के दिमाग में आ जाती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के पास ही कोई ब्राह्मण आया रात्रि के समय और उन्होंने दान मांगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा मध्य रात्रि का समय, कोष बंद है, और उन्होंने कहा कि भैया चलो कल आप सुबह आना, आप जितना मांग रहे उसे दुगना देंगे हम। जब ब्राह्मण लौटने लगा, वहां राज दरबार में घंटा रखा रहता था, बड़ा भारी ढोल, और कोई अद्भुत आश्चर्य की घटना घटती राज दरबार में, कोई खुशी हंसी की या आश्चर्य की, तो ढोल बजाया जाता था, लोगों को मालूम पड़ता कि कोई घटना घट गई। भीम उठे वहां से और उठ करके रात में जोर जोर से ढोल बजाने लगे। वो अब वो भीम बजा रहे थे बड़ा जोर जोर से। युधिष्ठिर ने रोका, बोले कौन ढोल बजा रहा है? लोगों ने कहा वो भीम दादा बजा रहे हैं। अरे बोले बुला बुला, बोले क्या बात क्या है, कौन सी आश्चर्य घटना घटी, ये तो अद्भुत, ये ढोल ऐसे थोड़ी बजता है। बुला लिया और युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भैया तुमने ढोल क्यों बजाया, कारण क्या था? बोले मैं आज बहुत खुश हूं। बोले खुश किस बात से? अरे बोले आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि युधिष्ठिर राजा के मन में इतना पूर्ण विश्वास है कि कल तक जीवित बचने वाले हैं। बोले बाबू बोल क्या रहे हो तुम, आपने उस ब्राह्मण को बोला कि कल सुबह आके दान ले जाओ, इसका मतलब कि आपको भरोसा है कि आप कल तक जीवित रहेंगे। बोले इतनी आश्चर्य की घटना। बात सही थी। वो भीम ने समझाया भैया क्या आपको भरोसा है कि कल तक आप कल तक रहेंगे, और क्या ये भरोसा है कि वो लेने वाला कल तक ब्राह्मण रहेगा? क्या आपको भरोसा है कि आप रहेंगे ब्राह्मण भी रहेगा लेकिन देने के लिए ये राज्य और धन आपके पास कल तक रहेगा, ये मालूम है? इसका कोई भरोसा नहीं आप चले जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं वो ब्राह्मण चला जाए लेने वाला, इसका भी कोई भरोसा नहीं ये धन ही चला जाए राज्य चला जाए, क्योंकि आपको मालूम है कितने बार राज्य आया और आपको कितने बार आपका राज्य गया, आपको वन वन भटकना पड़ा, अभी भी आपको सत्य का पता नहीं। आंखें खोली, युधिष्ठिर जी महाराज ने रोका उस ब्राह्मण देव, भैया आ जाओ, बोले अब भी दरवाजा खोलो, कोष खोलो, और जितना है चाहे उतना आप दान कर। जो युधिष्ठिर जी के मन में बात नहीं आई वो भीम के मन में आ गई। आज यहां उद्दालक के एक ऋषि के मन में बात नहीं आई और वो बात किसके मन में आ रही है? नचिकेता के। इसलिए आपके आसपास आपके पोते बच्चे होंगे ना, आप उसका आदर करो, वो क्या बोल रहे हैं। सत्य का साक्षात्कार बच्चों में ज्यादा होता है, बड़े ही लोग उसको झूठ सिखाते हैं, हम लोग उसको झूठ सिखाते हैं। एक बार एक ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। उसके बाद पूरा परिवार दोस्त जैसा हो गया, जैन फैमिली थी, एक छोटा सा बालक था, टीटी आया, टीटी वो टिकट चेक कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे का टिकट, उन्होंने कहा कि ये इतनी उम्र का है, कितनी उम्र तक, 11 साल तक नहीं लेते हैं ना, 11। तो उन्होंने उस बच्चे को बताया कि इतनी उम्र है इसलिए टिकट नहीं लिया, तो बच्चा ही बोल पड़ा मम्मी मेरी उम्र तो 12 साल है और आप टिट्टी को इतना कम क्यों बता रहे हो। टिट्टी के हिसाब से बोला, तीती के ही सामने बोला उसने, ओ चट्टा मार, उसने चट से चट्टा मारा। चुप, अरे बोले चुप क्यों, बोले उम्र मेरी 12 साल है। और उसको बोला अंकल, अंकल मम्मी झूठ बोल रही, मेरी 12 साल की उम्र है। वो टीटी बड़ा प्रसन्न हो गया, नजदीक आया, फिर उसके गाल में थपथपाया, बोले बेटा तुम्हारी उम्र 12 साल है मैं समझता हूं, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, इसलिए तुमको हम टिकट नहीं पूछेंगे, ले जाओ। बालक नचिकेता का जीवन बड़ा सुंदर है। शेष विषय हम कल करेंगे, आज प्रवचन को ही विराम देते हैं 2 मिनट के लिए। आप सीधे बैठ जाएं, भगवान का नाम जप करेंगे।